0: पुडुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद को 13,358 वोट मिले, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 4,876 वोट मिले। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है, जबकि तमिलनाडु में सत्ताधारी मधुरांतकम में टीवीके और धारापुरम में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आगे है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार तमिलनाडु विधानसभा के मधुरांतकम और दारापुरम उपचुनावों में सत्ताधारी टीवीके पार्टी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े चार डिजिटल प्लेटफॉर्म को चार हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ईडीएआर, वाहन सारथी और इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरमन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने का अनुमान है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्चार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 787 अंक बढ़कर 72,381 पर, जबकि निफ्टी 254 अंक की बढ़त के साथ 22,486 पर था। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिक्काल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

London. लेकर ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। आज के अंक में दोस्तों आपके साथ हूं मैं यानी आपकी रेडियो सखी कल्पना। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और जुड़े रहिए घर आंगन से एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ चैनल यानी कि 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर भी। और दोस्तों कहते हैं कि जो आंखें होती है ना वो व्यक्तित्व का आईना होती हैं। ये वो सब भी बता देती हैं जो हम किसी से छिपाना चाहते हैं। तो इसी बात पर अख्तर होशियारपुर साहब ने एक बहुत ही प्यारा सा शेर भी कहा है। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग होते हैं ना, लोग आंखों को भी पढ़ लेते हैं, लोग आंखों को भी पढ़ लेते हैं, अपनी नजरों को झुकाए रखना। तो अगर आपको कुछ छिपाना है तो भाई नजरें मिलाना नहीं है, आपको अपनी नजरें झुकाए रखना है।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत अभी आप जो सुन रहे थे तीन देविया फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। और देखिए, हर दिन अपने आप में जो होता है ना, वो बहुत ही खास होता है। तो आज 9 अक्टूबर का दिन भी कई महत्वपूर्ण अवसरों की याद दिलाता है। प्रादेशिक सेना दिवस, उत्कल मणि गोप बंधु दास जयंती और विश्व डाक दिवस सहित पुण्यतिथि रविन्द्र जैन जी की। आज इतने सारे जो महत्वपूर्ण अवसर हैं उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रादेशिक सेना दिवस उन नागरिकों के साहस और समर्पण को नमन करने का अवसर है जो अपने पेशे के साथ साथ देश की सुरक्षा का दायित्व भी निभाते हैं। वहीं उत्कलमणि गोप बंधु दास की जयंती हमें सेवा, त्याग और मानवता का संदेश देती है। उन्होंने अपना जीवन समाज सुधार, शिक्षा और देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया, इसलिए आज हम सभी उनको बहुत ही भाव से याद कर रहे हैं। साथ ही आज है पुण्यतिथि पद्मश्री से सम्मानित रविन्द्र जैन की। उन्होंने अपने मधुर संगीत और कालजयी रचनाओं से भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया, उन्हें भी हमारे भावपूर्ण नमन। और आइए अब बात करते हैं उस सेवा की जिसने कभी दूरियों को चिट्ठियों से पाट दिया था। विश्व डाक दिवस हमें याद दिलाता है कि तकनीकी के इस दौर में भी डाक सेवाएं हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। कभी डाकिया अपनों की खुशियां लेकर आता था तो कभी उसकी चिट्ठी किसी के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने का माध्यम बन जाती थी। तो आइए इस प्यारी सी बातचीत के बाद, इस प्यारी सी जानकारी के बाद, अब हम आपको ऐसा ही गीत सुना देते हैं आए दिन बहार के फिल्म से, जिसे गाया है आशा भोंसले ने।

दोस्तों, जब खत लिखने की बात हो ही रही है तो आपसे भी मैं यही कहूंगी कि भाई आप भी अपना फीडबैक भेज दीजिए हमारी ईमेल आईडी पर, और हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। और आज है शुक्रवार का दिन दोस्तों, और घर आंगन कार्यक्रम हर शुक्रवार ये स्पेशल अंक लेकर आता है बुजुर्गों के लिए, जिसका शीर्षक होता है एक कदम बुजुर्गों की ओर। घर में बुजुर्ग हों तो घर सिर्फ बड़ा नहीं होता, उसमें अनुभव भी रहता है, यादें भी और रिश्तों की गर्माहट भी। लेकिन सवाल है, क्या हम उनके साथ सचमुच आत्मीय रिश्ता बना पा रहे हैं? इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, यकीन मानिए। कभी उनके पास बैठकर पूछिए, आज आपका दिन कैसा रहा, उनकी पुरानी बातें सुनिए, भले वही कहानी कई बार आप पहले भी सुन चुके हों, लेकिन एक बार दोबारा सुन लीजिए उनका मन रखने के लिए। घर के जो छोटे बड़े फैसले

ले होते हैं ना, उसमें उनकी भी राय लीजिए। कभी उनकी पसंद का कोई गीत चला दीजिए तो कभी पुरानी तस्वीरें साथ बैठकर देख लीजिए। और हाँ, उनकी मदद जरूर कीजिए, लेकिन हर काम उनसे छीनिए मत। कई बार ऐसा होता है, हम उनकी सुविधा के लिए सोचते हैं कि भाई ये नहीं कर पाएंगे, लाओ हम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो काम वो खुद कर सकते हैं वो उन्हें करने दीजिए। आखिर आत्मीयता का मतलब सिर्फ देखभाल करना तो नहीं होता, सम्मान के साथ साथ देना भी है। याद रखिए, बुजुर्गों को हमारे घर में सिर्फ एक कमरा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए हमारे समय में थोड़ी जगह, हमारी बातचीत में थोड़ी हिस्सेदारी और हमारे दिल में पूरी जगह। और उन्हें यही एहसास दिलाना है जो इस गीत में कहा जा रहा है। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत, नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे, फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।

और दोस्तों कहते हैं ना कि भाई हम कई बार अपने बुजुर्गों से कहते हैं कि उम्र जो है वो बढ़ रही है, अब आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन जनाब आराम इतना भी मत कीजिए कि आपका जो शरीर है ना वो ये कहने लगे कि अब तो मैं उठना ही भूल गया। उम्र बढ़ने के साथ सक्रिय रहना और भी जरूरी हो जाता है। सुबह की थोड़ी सी जो हल्की सी सैर होती है, थोड़ी सी हल्की सी कसरत होती है, घर के छोटे मोटे काम या अपने किसी भी जो पसंदीदा आपका शौक है उसको जब समय देते हैं तो ये सारी चीज़ें शरीर और मन को चुस्त रखने के बड़े अच्छे तरीके हैं। और अगर घुटने या कमर साथ ना दें तो अपनी क्षमता के अनुसार हल्की गतिविधि की जा सकती है। ज़रूरत हो तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह भी लेनी चाहिए। मकसद देखिए दौड़ लगाना नहीं है कि भाई हम अपने बुजुर्गों से कहें कि नहीं दौड़ दौड़ के रहो ताकि आप चैतन्य रहो, चलते रहो। भाई उनको चलते फिरते और आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए थोड़ा सा गतिशील होना ज़रूरी है। इसलिए करना क्या है कि भाई उम्र को देखकर खुद को रोकिए मत। बच्चों से भी कहिए हमारे पास अनुभव भी है और ऊर्जा भी, क्योंकि जो उम्र बढ़ना है वो तो बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जिंदगी

से किनारा कर लेना जरूरी नहीं। सक्रिय रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अनुभवों से अगली पीढ़ी को भी रोशन करते रहिए। और याद रखिए कि भाई किसी ने कहा है ना, ये बात कही है तो इसलिए मैं याद दिलाती हूँ कि भाई याद रखिए, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो इसलिए जब तक भी आप में शरीर में क्षमताएं, उनको बढ़ाते रहिए, उनको मेंटेन रखिए। और इस जानकारी के बाद सुनिए ये प्यारा सा गीत आराधना फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की प्यारी सी आवाज में।

देखिए, अगर घर में हमारे आपके माता पिता या दादा दादी हैं तो उनके लिए सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी रखना बहुत काम की बात है। लेकिन अक्सर सवाल होता है कि कौन सी योजना हमारे काम की है और इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी। इसी काम को आसान बनाने के लिए 2026 में सरकार ने जीवन ऐप शुरू किया है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी सरकारी योजनाओं, सुविधाओं, मदद और जरूरी सेवाओं की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। और अगर कभी किसी बुजुर्ग को मदद या सही जानकारी की जरूरत पड़े तो 1-4-5-6-7 एल्डर लाइन पर भी संपर्क किया जा सकता है। तो घर के युवा साथियों, एक छोटा सा काम आपको जरूर करना है, वो ये कि वही अपने माता पिता या दादा दादी को इस ऐप और हेल्पलाइन के बारे में बताइए, क्योंकि सरकारी सुविधा तभी सच में काम की बनती है जब उसकी जानकारी सही व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। और याद रखिए, सिर्फ बुजुर्गों की देखभाल ही हमारी जिम्मेदारी नहीं, उनके सम्मान और सुरक्षित भविष्य में भी हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वो हमारे ऊपर गर्व करें कि भाई हमारे बच्चे हमारा कितना ध्यान रखते हैं।

दोस्तों, ये खूबसूरत संगीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, और फिल्म का नाम लव इन टोक्यो। और देखिए, दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है, उन्होंने कहा है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और ये पत्थर किसी भी उम्र में उछाला जा सकता है। तो आइए आज आपको एक ऐसी ही प्रेरक कहानी सुनाती हूँ, तमिलनाडु की गिरजा अम्मा की, जिनकी सराहना स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में की। गिरजा अम्मा जी वरिष्ठ शिक्षाविद हैं और करीब 15 स्कूलों से जुड़ी हैं। उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों को देश के सैनिकों के लिए प्रतिदिन 1 रुपये योगदान देने के लिए प्रेरित किया। एक साल में प्रत्येक बच्चे से ₹365 जमा हुए और हजारों बच्चों के छोटे छोटे योगदान से लगभग 40 लाख की राशि इकट्ठा हुई। गिरजा अम्मा जी ने ये पूरी राशि सैनिकों के लिए प्रधानमंत्री को चेक के रूप में सौंप दी। प्रधानमंत्री जी ने उनके समर्पण को बहुत ही सराहा और साथ ही राष्ट्र निर्माण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के रूप में रेखांकित किया और कहा कि उनका देशभक्त का जो ये भाव है हर भारतीय को प्रेरित करता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, अगर सोच में देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और देखिए ना, किसी ने एक ये भी बात कही है कि भाई मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। इसलिए प्रयास करते रहिए, क्या पता आपको क्या मिल जाए। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत संगीत हिमालय की गोद में फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने।

बिल्कुल सही बात है दोस्तों भाई, मन हमारा खिल जाता है जब हमारे मन की चीजें होती हैं। और देखिए, आप घर आंगन कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और आप सुन रहे हैं मेरे साथ घर आंगन, और मैं हूं आपकी रेडियो सखी कल्पना। और आज का कार्यक्रम श्रोताओं बुजुर्गों को समर्पित है, तो आइए एक कविता अपने बुजुर्गों के लिए सुनाती हूँ कि थक गए हैं पांव तो क्या, हौसले अभी जवान है, घर के हर एक कोने में आपके ही निशान है, आपने उंगली थाम के चलना हमें सिखाया था, वो दिन भी याद है जब गिरने पर उठाया था, आप घर की छांव हैं, आपसे ही घर घर लगता है, आप रहें तो उम्र का हर मौसम थोड़ा और सुंदर लगता है, बस इतना सा साथ हमारा, आप कभी अकेले ना हो, आपकी आंखों की हर नमी में हम आपके अपनों के मेले हों। तो भाई, अपने बुजुर्गों को भी हमेशा ये एहसास दिलाते रहिए दोस्तों कि आप उनके साथ हैं, और कभी उनका हाथ में हाथ पकड़ के बैठकर उनसे दो बातें कीजिए, उनके मन की भी जानिए, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ये कविता भी उन्हें सुना सकते हैं।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत यारना फिल्म से आप अभी सुन रहे थे आवाज़ किशोर कुमार की। और आइए आज रसोई में कुछ ऐसा बनाते हैं जो हमारे बुजुर्गों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, थोड़ा हटकर है लेकिन बनाने में बिल्कुल आसान है। मखाना मूंग दाल का नरम उपमा। इसके लिए आपको चाहिए एक छोटी कटोरी मूंग दाल, एक कटोरी मखाना, थोड़ा सा अदरक, जीरा चाहिए, बारीक कटी हुई गाजर या दूसरी जो भी सब्जियां आपको पसंद हो वो चाहिए, और थोड़ा सा तेल या घी चाहिए, नमक और पानी भी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि भाई मूंग दाल को 15-20 मिनट भिगो लें, मखानों को हल्का भूनकर दरदरा पीस लें। अब कढ़ाही में थोड़ा तेल या घी डालकर जीरा और अदरक भूनें, फिर सब्जियां डालकर हल्का पकाएं। इसमें भीगी हुई मूंग दाल और पिसे हुए जो मखाने हैं वो डाल दें। पानी डालकर धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक उपमा नरम न हो जाए। मूंग दाल से प्रोटीन और मखाने से प्रोटीन के साथ कई पोषक तत्व मिलते हैं। सब्जियां जो होती हैं इसमें, उनमें फाइबर और दूसरे पोषक तत्व भी रहते हैं, और होता क्या है कि भाई नरम होने के कारण इसे चबाना भी आसान रहता है, तो बुजुर्गों के लिए खाने की भी दिक्कत नहीं होती, वो इसे इजीली खा सकते हैं। साथ ही इसमें नमक मसाला और तेल जो है वो हल्का ही रहता है, तो इस लिहाज से भी वो उनके लिए अच्छा है। तो इस बार आपको करना क्या है कि भाई नाश्ते में कुछ नया आजमाइए, और जो मैंने अभी आपको बताया है मखाना मूंग दाल का नरम उपमा, इस बार वो भी बनाकर अपने बुजुर्गों को खिलाइए और फिर देखिए स्वाद भी बदलेगा और नाश्ते में पौष्टिकता भी जुड़ेगी। तो इतनी अच्छी जानकारी के बाद अब आपको एक प्यारा सा गीत भी सुना देती हूँ। तो आइए ये गीत सुनते हैं एक फूल दो माली फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में।

श्रोताओं, देखिए, हम किताबों की तरह हैं। अधिकांश लोग सिर्फ हमारा कवर देखते हैं, कुछ लोग भूमिका पढ़ते हैं, बहुत लोग आलोचकों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम ये जान पाते हैं कि हमारे भीतर आखिर है क्या। और देखिए, इन्हीं भावों पर किसी ने कही है ये पंक्तियां कि आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज कार्यक्रम का यह अंतिम गीत फागुन फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में आपको सुनवाते हूँ। और इस गीत को सुनिए और मुझे यानी अपनी रेडियो सखी कल्पना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दिल्ली में दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर भारी यातायात की आशंका को देखते हुए लिया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। यह निर्णय नई दिल्ली क्षेत्र में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया NR कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार E. Vinayagam को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ TVK के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के

दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल 12 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेगा। इसमें उत्तरी इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों से करीब 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्रेट नॉर्थ ट्रेड मिशन का उद्देश्य भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के अंतर्गत व्यापार तथा निवेश के अवसर तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत के संकल्प और देश तथा उसके नागरिकों की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। घरेलू शेयर बाजार का संविदी सूचकांक आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 756 अंक बढ़कर 72,350 पर, जबकि निफ्टी 253 अंक बढ़कर 22,485 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म आप सब पहचान ही गए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1973 की एक खूबसूरत दिल को छूने वाली फिल्म हंसते जख्म। नाम ही कितना अजीब और खूबसूरत है, हंसते जख्म यानी कि चेहरे पर मुस्कान लेकिन दिल के भीतर दर्द। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था मशहूर फिल्मकार चेतन आनंद ने। मुख्य भूमिकाओं में थे नवीन निश्चल, प्रिया राजवंश और बलराज सहानी, जबकि संगीत था महान संगीतकार मदन मोहन का और गीत लिखे थे कैफी आजमी ने। बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म थी। आज भी जब इस फिल्म के हम गीत सुनते हैं तो दिल में एक अलग ही कसक पैदा होती है। जैसे अभी आपने ये गीत सुना, ये सदाबहार गीत है। जितनी बार आप इस गीत को सुनिएगा उतनी बार मन भरता नहीं है। ये फिल्म जिसमें नवीन निश्चल सोमेश के रूप में नजर आए थे, मीना और चंदा ये किरदार के रूप में दिखी थी प्रिया राजवंश, बलराज सहानी एसपी दीनानाथ महेंद्रो के किरदार में नजर आए थे, जीवन कुंदन के भूमिका में थे, नादिरा एक वैशाल्य की मालकिन बनी थी और अचला सचदेव हीराबाई के रूप में नजर आई थी। वहीं पर मुराद, डी के सप्रू, कमल कपूर, मेक मोहन, सोमेश, राम सेठी ये सब कलाकार जो थे इन्होंने बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाई और फिल्म को यादगार बना दिया।

चेतन आनंद के निर्देशन में सजी फिल्म हंसते जख्म। ये थोड़ी सी अलग तरीके की फिल्म थी, क्योंकि चेतन आनंद केवल कहानी सुनाने वाले निर्देशक नहीं थे, वे अपने पात्रों और उनके सामाजिक परिवेश को पर्दे पर बहुत गंभीरता से देखते थे। नीचा नगर, हकीकत, हीर रांझा जैसी फिल्मों के बाद हंसते जख्म में भी उनका जो ध्यान था वो इंसानी रिश्तों और सामाजिक यथार्थ पर दिखाई देता है। और इस फिल्म की खास बात जानते हैं आप क्या थी, इसमें मनोरंजन के साथ साथ समाज के उन हिस्सों को भी जगह मिली जिन्हें मुख्य धारा की फिल्मों में अक्सर केवल पृष्ठभूमि बना दिया जाता था। फिल्म का संगीत आज भी अमर है और इसका हर गाना अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, और इसकी वजह थी मदन मोहन का संगीत, और उनके साथ थे शब्दों के जादूगर कैफी आजमी। इस जोड़ी ने फिल्म को ऐसे गीत दिए जो आज भी सुनने वालों को अपने समय से बाहर ले जाते हैं। एक से एक खूबसूरत से गीत सुनते हैं, एक और खूबसूरत सा गीत।

सेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां तो मामला ही कुछ और है, उनकी हीरोइन मुमताज नहीं बल्कि प्रिया थी। हालांकि वो थोड़ा सा अपसेट हुए, लेकिन उसके बाद उनकी जो ट्यूनिंग थी प्रिया जी के साथ में वो काफी अच्छी हो गई थी। और अब हम आपको लता जी की आवाज में एक ऐसा इस फिल्म का गीत सुनवाने जा रहे हैं जो आपको सुनके लगेगा कि ये किसी पुराने दर्द की डायरी का पन्ना हो। जी हाँ, मदन मोहन की इस रचना में सितार का इस्तेमाल खास तौर पर इतना ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि बस इस गीत को बार बार सुनने का मन करता है। तो चलिए सुनते हैं फिर इसी गीत को, उसके साथ ही आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंच गए हैं, उनको भी हम जल्दी ही शामिल करेंगे।

नवीन निश्चल जी को जब फिल्म के लिए साइन किया गया था तब उन्हें बताया गया था कि उनकी नायिका मुमताज होगी और प्रिया राजवंश का जो रोल था वो एक छोटा सा तय किया गया था। लेकिन जब नवीन जी

वीरनगांव गुजरात से अजीत भाप सर प्रमिला जी जुड़े हुए हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख रहीम जी हमारे साथ हैं। पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल जी जुड़े हुए हैं। ये संदेश स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल सोनू और पप्पी का आया है। रविंद्र मोहन दास आशा जी किशनगंज बिहार से हमारे साथ हैं। सुरेश गंगनेजा जी पूनम जी के साथ जुड़े हुए हैं जलालाबाद बेस्ट से। सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता।

शिल्पा और रिमझिम गुप्ता जी हैं। किशनगढ़ बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिग्दर्शन गौर कविता जी मेरठ से हमें सुन रहे हैं। संदीप मक्कर ज्योति जी हमारे साथ जालंधर से जुड़े हैं। बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंजू टॉमस, पिंकी लवली आरती हमारे साथ हैं। भारत मक्कर जी जालंधर से हमें सुन रहे हैं। गुरमीत सिंह जी हमारे साथ हैं पोटियल कला दुर्ग से। संजय साहू सुजाता जी हमारे साथ हैं। और गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी जी हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जाधव जी नेहरू चौक पैठन से जुड़े हुए हैं। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल पूजा जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डोंडी लोहारा बालोद से दोमेंद्र नेताम गंगेश्वरी जी हमें सुन रहे हैं। ये संदेश ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी निगत परवीन श्रीनिवास और परिवार के सभी सदस्यों का है। बागपत यूपी से संजय डिंगिया नमन अपार जी हमारे साथ हैं। सोनसिंह गिल जी लोहगढ़ ठाकुरवाला से हमें सुन रहे हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी प्रमोद जी हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा पूजा जी हमारे साथ हैं। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाडो कोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदिरानगर भवरपुर से राधेश्याम देवानगन चंपा जी हमारे साथ हैं। बेबी आलिया अयान बाबू जी घनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से हमारे साथ हैं। ये संदेश यतर्व बाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से विनोद जी का आया हुआ है। अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीटीआई संसद मार्ग से। और केथल हरियाणा से मधु नायक जी हमारे साथ हैं। अगला संदेश विलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवनगन कौशल्ला और हेमलता डिंपल जी का आया हुआ है। नागरकोला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी जी हैं। सुधाकर राजे जी कालेगांव जाफराबाद से हमें सुन रहे हैं। पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता और कीर्ति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सफर में आप हमारे हम सफर बने। कुछ और संदेश भी हमारे पास हैं। उषा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। और मुकेश कासलेकर जी तहसील बरोड जिला अमरावती महाराष्ट्र से हमें सुन रहे हैं। बसंत कुमार जी दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हमारे साथ हैं। पहाड़गढ़ मुल्तानी ढांडा से अनिल जी का एक और संदेश हम तक पहुंचा है। धर्मेंद्र छिपा जी हमारे साथ हैं। बसंत कुमार सिन्हा जी का एक और संदेश आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे बस अब यही कहेंगे कि इस फिल्म को आप अपनी लिस्ट में, देखने वाली लिस्ट में शामिल कर लीजिए। फिलहाल वक्त कह रहा है कि आपसे अनुमति लेनी है, लेकिन कहीं मत जाइए। मनीषा जी 2:30 पर प्रोग्राम एक ही कलाकार लेकर आएंगी और 3:00 मैटिनी मेलोडीज में एक बार फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव, पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज शामी नवी दिल्ली च महिला ते बाल विकास मंत्रालय शिखर सम्मेलन दे समाप्ति समागम विच शामिल होणगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अज सिंगापुर दे 3 दिना सरकारी तौर ते रवाना होए, ओ सिंगापुर दे राष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री नाल मुलाकात करनगे। दिल्ली पुलिस ने भड़के जंतर मंत्र विखे कोकरोच जनता पार्टी वालों तजवीजशुदा विरोध प्रदर्शन नूं मंजूरी देने तों इनकार कर दिता है। अमरीका विच ट्रंप प्रशासन ने 8 वड्डियां तकनालोजी अते आउटसोर्सिंग कंपनियों लई रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया ते रोक लाउण दा ऐलान कीता है। ते क्रिकेट विच भारत ते वैस्ट इंडीज विचकार 5 20-20 मैचां दी लड़ी दा दूजा मैच अज शामी रांची च खेडिया जाएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज शामी नवी दिल्ली च महिला ते बाल विकास मंत्रालय वालों कराए जा रहे 2 रोज़ा सम्मेलन दे समाप्ति समागम विच शामिल होणगे। कल शुरू होए इस सम्मेलन विच सारे राज्यां दे सियासी आगू ते महिला ते बाल विकास खेत्र नाल जुड़े अधिकारी हिस्सा लै रहे ने। यह प्रधानमंत्री दे दृष्टिकोण अनुसार आयोजित किए जा रहे खेतरी सम्मेलनां दी लड़ी विच दूजा सम्मेलन है। इसका उद्देश सहयोगी संघवाद

0: जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले सीजेपी को इस जगह पर मुजाहिरा करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन वो मजकूरा रहनुमा खतूत और अपनी तरफ से किए गए तहरीरी वादों पर अमल करने में नाकाम रही। ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि इजाजत न देने का फैसला पार्टी की पिछली नाकामी के तनाजुर में किया गया है कि वो नई दिल्ली इलाके में पुलिस के रहनुमा खतूत और उसके अपने तहरीरी वादों, नीज मौजूदा नज्म व ज़ब्त की सूरत हाल, अवामी हिफाजत और ट्रैफिक साबतों पर अमल न कर सकी।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंडिमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: उन्होंने मजीद कहा कि फिलहाल इस इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 के तहत इम्तनाई अहकामात नाफिज हैं, जिनकी रूह से अवामी हिफाजत और अमनो कानून बरकरार रखने के लिए जरूरी बंदिशें लागू हैं। उन्होंने खबरदार किया कि दिल्ली पुलिस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ मौजू कार्रवाई करेगी। आज दोपहर 2 बजे के बाद से सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां जो अपने पहले स्टेशन से रवाना होंगी और उन्हें नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह और दोपहर 2 बजे के दरमियान पहुंचना है, उन्हें उनके पहले स्टेशनों पर ही मंसूख कर दिया गया है। रेलवे की वजारत ने बताया कि यह फैसला इन दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में सड़कों पर शदीद इम्कानी ट्रैफिक हजूम के तनाजुर में लिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ख़वातीन और बच्चों की तरक्की के बारे में महकमा जाति सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी जलसे में शिरकत करेंगे। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुई थी, जिसमें सभी रियासतों के सियासी रहनुमा और ख़वातीन और बच्चों की तरक्की से मुतालिक अफसरान शिरकत कर रहे हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: महकमा जाती सरबराह कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है जिसका तसव्वुर वजीर आजम ने इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत को मजबूत बनाने, मुल्क की तरजीहात की इज्तिमाही जिम्मेदारी को बढ़ावा देने और करीबी मरकज रियासत शराकत दारी के जरिए इसके नतीज में तेजी लाने के लिए पेश किया था। इस कॉन्फ्रेंस में 4 अहम मौजूद पर तवज्जो दी जा रही है, जिनमें तगजिया, इब्तदाई तालीम, बच्चों की हिफाजत, खवातीन की हिफाजत और उन्हें बाइख्तियार बनाया जाना शामिल है। इस कॉन्फ्रेंस में शोभा जाती तरजीहात पर बातचीत करने, अच्छे तौर तरीकों से एक दूसरे को वाकिफ करने, चैलेंजों से निपटने पर अमल दरामद और बेहतर हुक्मरानी और खिदमात बहम पहुंचाने से मुतालिक मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर कार्रवाई से इत्तेफाक करने के लिए मरकज और रियासती सरकारों के मुतालिका फरीकें यकजा होंगे। न्यूज डेस्क से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: मरकजी हुकूमत ने बच्चियों को रहम मादर में ही कत्ल कर दिए जाने की रोकथाम, बच्चियों की हिफाजत और तालीम को यकीनी बनाने और लड़कियों के लिए बराबरी के मौकों को फरोग देने के मकसद से साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम शुरू की थी। पिछली दहाई में यह मुहिम एक अवामी तहरीक बन गई। इस मुहिम में लड़कियों के जिंदा रहने, उनकी हिफाजत, तालीम और मजमूई तरक्की पर तवज्जो दी गई है। इस मुहिम के तहत स्कूलों में बच्चों के दाखिले, तालीम जारी रहने, महफूज जचगी और सफाई सुथराई को भी फरोग दिया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज सिंगापुर के सरकारी दौरे पर रवाना हुई। अपने 3 रोजा दौरे में वो सिंगापुर के रहनुमाओं, तजारत और सरमायाकार बिरादरी के सीनियर अरकान और आलमी इदारों के सरमायाकारों के साथ बहुत सी आला सतह की सरगर्मियां अंजाम देंगी। अपने दौरे में मोहतरमा सीतारमन सिंगापुर के सदर तरमन शनमुगा रत्नम और वजीर आजम लॉरेंस फोंग से मुलाकात करेंगी। वो सिंगापुर के नायब वजीर आजम गान किम योंग और वजीर खारजा डॉ विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात करेंगी। मुज़ाकरात में भारत सिंगापुर जामे दिफाई शराकत दारी के अहम पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज इलाकाई फौज के यौम तासीस के मौके पर इसके सभी अहदेदारों, रिटायर्ड अहलकारों और उनके कुनबों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि इलाकाई फौज नागरिक भी सैनिक भी की मिसाल पेश करती है, जो गैर मामूली अजाइम के साथ मुल्क की खिदमत के लिए मामूली शहरियों के अज़्म की अक्कास है। वजारत खारिजा ने कहा है कि अमरीका के लेबर महकमे का कुछ कंपनियों के लिए मुस्तकिल लेबर नोटिफिकेशन प्रोग्राम PERM से मुतालिक फैसला H-1B वीजा प्रोग्राम से मुख्तलिफ है। वजारत ने एक बयान में कहा है कि परम दरखास्तों को मुअत्तल किया जाना बजाते खुद मौजूदा H-1B प्रोग्राम या H-1B वीजा

0: in the state has further strengthened the message that a daughter is not a burden but a source of strength for the family and society. Over the past 10 years, Beti Bachao Beti Padhao has grown beyond a government scheme into a powerful social movement promoting the dignity, education and equal opportunities of the girl child. With Jitendra Dwivedi, Saleha Ghazi, Akashwani News, Jaipur.
1: The External Affairs Ministry has said that U.S. Department of Labor's decision concerning the Permanent Labor Certification PERM program for certain companies is distinct from the H-1B visa program. The ministry in a statement said the suspension of PERM applications does not by itself affect the validity of existing H-1B visas or the status of H-1B visa holders and their dependents. It added that though there could be some impact on the permanent residency or green card process of eligible employees of the affected companies. Earlier, the Trump administration had announced the suspension of a key employment-based green card process for 8 major technology and outsourcing companies, including Indian firms Infosys, TCS, Wipro and HCL. The action also covers Cognizant, Capgemini, Microsoft and Adobe. In cricket, India will take on the West Indies in the second of the 5-match T20 international series in Ranchi today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. India lead the series 1-0 after winning the opening match, with skipper Shreyas Iyer's century powering the hosts to victory. The India Meteorological Department IMD forecast heavy rainfall accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Heavy rainfall is also likely to prevail over South Interior Karnataka and Uttarakhand during the day. IMD said Lakshadweep, Bihar, Andhra Pradesh, East Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha, West Bengal and Sikkim are also expected to witness thunderstorms, lightning and gusty winds today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi may remain closed from 9 p.m. today till tomorrow. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stand cancelled at four stations. Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. All India NR Congress wins Sattan Chowdhury Assembly constituency in Puducherry, counting on four Assembly seats and one Lok Sabha seat underway. Ministry of External Affairs clarifies U.S. suspension of PERM applications does not affect H-1B visas. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टांचावडी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
3: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है, जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के

0: 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में आईआईटी जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस के एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये से घटकर 8 रुपये से भी कम रह गई है।
4: भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। यह तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे।

0: श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
1: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, ईडीएआर, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए ईडीएआर पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची एच, HH1 और अनुसूची एक्स में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंच के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
2: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही हैं। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंगानुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।

0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक की उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्री कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इस बीच कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया अनार कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टांचावडी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेश खिदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: सबंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना और योजना साकार होती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
1: और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: गाँव ढाणी कुतुब जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांश, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
1: कार्यक्रम उमंग की प्रस्तुतकर्ता

0: आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: 8 सितंबर 2026 को अरुणिमा सिन्हा के संघर्ष से सफलता की कहानी सुनकर वास्तव में बहुत प्रेरणा मिली
1: जी।
0: उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति यह सिखाती है कि निरंतर प्रयास और मजबूत संकल्प के सामने कोई भी शारीरिक बाधा सफलता की राह नहीं रोक सकती। साथ ही लुका छिपी कार्यक्रम ने बचपन की खूबसूरत यादें ताज़ा कर दी। आपका कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद भी है। आपकी कड़ी मेहनत और शानदार प्रस्तुति को दिल से सलाम
1: जी। आपने आगे लिखा है, दिनांक 10 सितंबर 2026 को कार्यक्रम उमंग के अंतर्गत भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन एवं उपलब्धियों की जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक रही। वहीं माउंटेन मैन दशरथ मांझी के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक कहानी ने हमें सिखाया कि कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। आपका ये कार्यक्रम भारत की विविधता में एकता और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से परिचित कराता है, जिसका मुझे अपने परिवार के साथ बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद एवं हार्दिक आभार।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार, क्योंकि आप परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं
1: जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: आप सबके संदेशों के लिए हमारा आभार। श्रोताओं, इसी तरह से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। पुरस्कारों और सम्मानों की चर्चा के इस पड़ाव पर आज हम बात करेंगे भारत के साहित्य जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान की, ज्ञानपीठ पुरस्कार की।
1: जी हाँ श्रोताओं, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को कम होती है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी विमलेश जी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को नहीं होती। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
1: ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा की गई थी और पहला पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया।
0: तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था।
1: जी बताती हूँ, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के महान कवि जी शंकर कुरुप को वर्ष 2065 में प्रदान किया गया था। उन्हें उनके काव्य संग्रह उड़क्कुझल यानी बांसुरी के लिए सम्मानित किया गया था।
0: बहुत सुंदर, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही भारतीय भाषाओं के साहित्य को सम्मान देने से हुई।
1: जी बिल्कुल। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत अनेक भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं वाला देश है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक सृजन को पहचान और सम्मान देना है। तो अजीत जी, किन किन भाषाओं के साहित्यकारों को ये पुरस्कार मिल सकता है?
0: मिमलेश जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के साहित्य से संबंधित है
1: जी।
0: समय के साथ साथ इसका दायरा बढ़ा है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी, मैथिली और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकार अब तक इस सम्मान से अलंकृत हो चुके हैं
1: जी। यानी ये पुरस्कार केवल किसी एक भाषा के साहित्य को नहीं, बल्कि भारत की विविध साहित्यिक सृजन एवं परंपराओं को सम्मान देता है।
0: जी हाँ बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है।
1: अजीत जी, अक्सर एक प्रश्न मेरे मन में आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम ज्ञानपीठ क्यों रखा गया?
0: बहुत सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ का अर्थ है ज्ञान का स्थान या ज्ञान का आसन। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पुरस्कार साहित्य और ज्ञान की साधना को सम्मान देने की भावना से जुड़ा हुआ है।
1: तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम भी तो बताइए, हमारे विद्यार्थी श्रोता जरूर इस जानकारी से लाभान्वित होंगे।
0: जी जरूर। हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, कृष्ण सोबती और विनोद कुमार शुक्ल जैसे साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं
1: जी। तो चलिए अजीत जी, अब लगे हाथों आपसे भी एक प्रश्न। और वो प्रश्न ये है कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी?
0: ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए यह सम्मान मिला था
1: जी।
0: तो अब एक प्रश्न मेरी ओर से, क्या यह पुरस्कार केवल कविता के लिए दिया जाता है?
1: नहीं अजीत जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य साहित्यिक रचनाएं भी शामिल होती हैं।
0: श्रोताओं, आपकी जिज्ञासा तो जरूर बढ़ रही होगी कि इस पुरस्कार

0: कर में मिलता गया है। तो आपको हम बता दें, इस पुरस्कार के साथ साथ प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की प्रतिमा और नकद राशि भी दी जाती है।
1: आपने कहा वाग्देवी की प्रतिमा यानी माँ सरस्वती की प्रतिमा।
0: जी हाँ, भारतीय परंपरा में माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी माना जाता है।
1: जी,
0: इसीलिए साहित्य के सर्वोच्च सम्मानों में वाग्देवी की प्रतिमा का होना तो बहुत ही अर्थपूर्ण है।
1: तो श्रोताओ, आज हमने जाना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ, पहला पुरस्कार किसे मिला और इसका साहित्य में क्या महत्व है।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात श्रोताओ, भारत की विविध भाषाएं हमारी सांस्कृतिक शक्ति हैं। हिंदी हो या बांग्ला, तमिल हो या मलयालम, मराठी हो या कन्नड़, हर भाषा अपने साथ एक समृद्ध साहित्यिक प्रवाह लेकर चलती है।
1: और ज्ञानपीठ पुरस्कार उस साहित्यिक विविधता को सम्मान देने वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा है।
0: जी हाँ, बिल्कुल। तो आइए श्रोताओ, हम भी अपनी मातृभाषा और स्थानीय भारतीय भाषाओं के साहित्य को पढ़ें, समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएं।
1: क्योंकि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं बल्कि हमारी स्मृतियों, विचारों और संस्कृति की पहचान भी है। तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी, जरूर लिख भेजिएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है श्रोताओ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए।
0: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है सीखो।
1: ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता सीखो का संगीत रूपक है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए।
0: सीखो। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो।

0: पर दम,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना।
2: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: ये कार्यक्रम भारतीय सेना के महानायक और वीर योद्धा सूबेदार जोगिंदर सिंह जी के जीवन और भारत चीन युद्ध के समय उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता और शौर्य का विवरण देता है। उन्हें मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही, उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सूबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सूबेदार साहब।
2: बोले सोनिहार।
3: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के तहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।

0: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
1: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहाँ हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
1: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
0: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
4: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
5: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
6: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
2: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
7: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
2: कुसुमलता,
7: वीरेंद्र
2: और हमारी आज की विशेषज्ञ
7: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

मीरा के खूबसूरत से गीत आप तक पहुंचाते हैं और कुछ सवाल जवाब भी होते हैं। तो आज आप तैयार हैं ना इन सब के लिए? आज आपके साथ एक बार फिर मैं हूं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। शुरुआत आशा जी के इस गीत के साथ, और तैयार रहिए, इसके बाद आपसे एक सवाल।

सामिन अदावर्स, ये आकाशवाणी है। सपहर के 3 बज चुके हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशात का अब आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामिन का खैर मकदम है। हमारी नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशो नाले प्रोग्रामों पर। दिन में 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5:03:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद।

सहपहर 3:30 बजे मारूफ अदाकार संजीव कुमार के साथ की गई एक बातचीत आप सुनेंगे। आपसे गुफ्तगू की मारूफ ब्रॉडकास्टर जनाब के नैयर ने।

शाम 4 बजे आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरी नशर की जाएंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव से 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। दिन के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। वज़ारत खारिजा ने कहा है कि अमरीका के जरिए PERM दरख्वास्तों को मनसूख करना H-1B वीज़ा को मुतासर नहीं करेगा। हौसियों ने सऊदी अरब में हवाई अड्डों पर फिर से हमले किए हैं। भारत ने इन हमलों की मजम्मत की है और कहा है कि सिविलियन बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह नाकाबिल कबूल है। भारत ने सऊदी अरब में रहने वाले अपने शहरियों से चौकस और मुस्तैद रहने को कहा है। ट्रंप इंतजामिया ने 8 बड़ी टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए रोजगार पर मबनी ग्रीन कार्ड अमल पर रोक लगाने का ऐलान किया है और कहा है कि अमरीका सिर्फ उन गैर मुल्की हुनरमंद अफराद को रागिब करना चाहता है जो गैर मामूली सलाहियत रखते हैं। और क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजारत खारिजा ने कहा है कि अमरीका के लेबर महकमे का कुछ कंपनियों के लिए मुस्तकिल लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम PERM से मुतालिक फैसला H-1B वीज़ा प्रोग्राम से मुख्तलिफ है। वजारत ने एक बयान में कहा है कि PERM दरख्वास्तों को मुअत्तल किया जाना बजात खुद मौजूदा H-1B वीज़ा या इसके हामिल अफराद और उनके मुनहसर अफराद की हैसियत के जवाज़ को मुतासर नहीं करता। हौसियों ने एक बार फिर कल सऊदी अरब पर हमलों का दावा किया है जिनमें रियाज में शाह खालिद बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे, नजरान हवाई अड्डे और खमीस मुशैत में एक फजाई अड्डे को निशाना बनाया गया। हौसियों ने वर्करों को वार्निंग दी है कि वो सऊदी तेल मराकज और हवाई अड्डों से दूर रहें। इसके जवाब में सऊदी

भारत वाले इत्तेहाद ने ऐलान किया है कि उसके फजाई दिफाई निजाम ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच में ही रोका और तबाह कर दिया और अहद किया है कि उसके कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। इन हमलों के सबब बैनुल अक्वामी फजाई सफर में रखना पैदा हो गया है और एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा समेत मुख्तलिफ सरकर्दा एयरलाइनों ने रियाज के लिए अपनी परवाजें आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं। सऊदी अरब की राजधानी में शाह खालिद बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो सफर शुरू करने से पहले एयरलाइन से अपनी परवाजों की सूरत हाल मालूम कर लें। मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दून, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने सऊदी हवाई अड्डों पर हौसियों के हमलों की मजम्मत की है। यूएई की खारिजी उमूर की वजारत ने यह कहते हुए एक बयान जारी किया है कि ये हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं और यादा किया है कि यूएई सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती रखता है।

किया है कि यूएई सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती रखता है। रियाज में भारतीय सिफारतखाने ने सऊदी अरब में रिहायश पजीर भारतीय शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट और मुस्तैद रहें और बगैर ज़रूरत घर से बाहर न जाएं। इस एडवाइजरी में सिफारतखाने ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो जारी वाकयात से मुतालिक कोई वीडियो या खबर शेयर या रिपोस्ट करने से गुरेज करें। उन्हें मकामी हुकाम की जानिब से जारी हिदायात की पाबंदी करने को कहा गया है। रियाज में भारतीय सिफारतखाना और जिद्दा में कौंसिल खाना VFS के जरिए मामूल के मुताबिक कामकाज कर रहा है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे सातों दिन की हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 800-247-1234 पर मुसलसल दस्तियाब है। वजीर खारजा डॉक्टर एसशंकर ने कहा है कि भारत और घाना एक देरीना शराकत दार और ग्लोबल साउथ के अलमबरदार हैं। दोनों ममालिक सेहत, ज़राअत, दवासाजी, कानकनी, दिफा, रेलवे और डिजिटल टेक्नोलॉजी में तआवुन को गहरा करना चाहते हैं। उन्होंने दोनों ममालिक के तरक्याती प्रोग्रामों में मुमासलत का जिक्र किया। दोनों मुल्कों ने ज़रई तहकीक और तालीम, हयातियाती तनव्वो, साइंसी तहकीक और सलाहियत साजी के शोबों में मुआहिदों का तबादला किया। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत दवासाजी, सेहत, कानकनी, दिफा और रेलवे के शोबों में वसीतर तआवुन के इम्कान देख रहा है। जयशंकर, जो कि अफ्रीका के 3 मुल्कों के दौरे पर हैं, ने कहा कि भारत और घाना को बढ़ती हुई कसीर कुतबी दुनिया में ग्लोबल साउथ की आज़ादी की आवाज़ और पार्टनर के तौर पर मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज सिंगापुर के सरकारी दौरे पर रवाना हुई। अपने 3 रोजा दौरे में वो सिंगापुर के रहनुमाओं, तजारत और सरमायाकार बिरादरी के सीनियर अरकान और आलमी इदारों के सरमायाकारों के साथ बहुत सी आला सतह की सरगर्मियां अंजाम देंगी। अपने दौरे में मोहतरमा सीतारमन सिंगापुर के सदर और वजीर आजम से मुलाकात करेंगी। वो सिंगापुर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा से भी मुलाकात करेंगी। इन मुजाकरात में भारत सिंगापुर जामे दिफाई शराकत दारी के अहम पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में खवातीन और बच्चों की तरक्की के बारे में महकमा जाति सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी जलसे में शिरकत करेंगे। ये 2 रोजा कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुई थी, जिसमें सभी रियासतों के सियासी रहनुमा और खवातीन और बच्चों की तरक्की से मुतालिक अफसरान शिरकत कर रहे हैं। महकमा जाति सरबराह कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है जिसका तसव्वुर वजीर आजम ने इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत को मजबूत बनाने, मुल्क की तरजीहात की इज्तमाही जिम्मेदारी को बढ़ावा देने और करीबी मरकज रियासत शराकत दारी के जरिए इसके नतीजे में तेजी लाने के लिए पेश किया था। इस कॉन्फ्रेंस में 4 अहम मौजूदात पर तवज्जो दी जा रही है, जिनमें तग़ज़िया, इब्तदाई तालीम, बच्चों की हिफाजत, खवातीन की हिफाजत और उन्हें बाइख्तियार बनाया जाना शामिल है। इस कॉन्फ्रेंस में शोबा जाति तरजीहात पर बातचीत करने, अच्छे तौर तरीकों से एक दूसरे को वाकिफ कराने, चैलेंजों से निमटने पर अमल दरामद और बेहतर हुक्मरानी और खिदमात बहम पहुंचाने से मुतालिक मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर कार्रवाई से इत्तेफाक करने के लिए मरकज और रियासती सरकारों के मुतालिका फरीकैन यकजा होंगे। आज भारत की खारिजी खिदमात से मुतालिक दिन के मौके पर वजारत खारिजा ने विकसित भारत के विजन और मुल्क नीज शहरियों की खिदमात के तहत अपनी अहदबस्तगी का इरादा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि बैरून मुल्क भारतीय शहरियों की बहबूद के तहफ्फुज से लेकर दुनिया भर के ममालिक के साथ दोस्ती और शराकत दारी को मुस्तहकम करने तक वजारत मुल्क की खिदमत के तहत वक्फ है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज इलाकाई फौज के यौम तासीस के मौके पर उसके सभी अहदेदारों, रिटायर्ड अहलकारों और उनके कुनबों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने मुल्क की खिदमत के तई उनके मुसम्मम इरादे और एक महफूज और खुद इन्हिसार भारत के तई उनके गिरां कद्र तआवुन को सलाम पेश किया। मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत के टेलीकॉम और डिजिटल शोबों में पिछली दहाई के दौरान काबिले जिक्र तब्दीली आई है और ये शोबे आलमी सतह पर नुमाया हुए हैं। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सिंधिया ने कहा कि भारत दुनिया में ऐसा 5वां मुल्क भी बन गया है जिसने अपने तौर पर 4G नेटवर्क तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 1 GB डेटा की लागत 268 रुपए से कम होकर महज 8 रुपए हो गई है। जनाब सिंधिया ने कहा कि भारत का मकसद अपने 5G सारिफिन की तादाद को 2 गुना करना है, जो इस वक्त 55 करोड़ है और इसे साल 2030 तक 1 अरब

0: करना है। ट्रंप इंतजामिया ने 8 बड़ी टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए रोजगार पर मबनी ग्रीन कार्ड अमल पर रोक लगाने का ऐलान किया है और कहा है कि अमरीका सिर्फ उन गैर मुल्की हुनरमंद अफराद को राहिब करना चाहता है जो गैर मामूली सलाहियत रखते हैं। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, TCS, विप्रो और HCL शामिल हैं। इसके अलावा कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और अडोबी भी इसके दायरे में आएंगी। अमरीका के लेबर महकमे के वजीर कीथ सॉन्डरलिंग ने कहा कि मजकूरा कंपनियों के ताल्लुक से मौजूदा विफाखी छानबीन के तनाजुर में ये मुअत्तली की गई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत निर्यात माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला समेत अमेरिका के 6 अहम टेक्नोलॉजी रहनुमाओं को साइंसी कामयाबियों और टेक्नोलॉजी इख्तरा के लिए मुल्क के आला तरीन एजाजात से नवाजा है और उनकी खिदमात को अमरीकी आलमी क्यादत के लिए कलीदी करार दिया है। मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 T20 बैन अल-अक्वामी मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत इफ्तिताही मुकाबला जीतने के बाद, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने सेंचुरी बनाई थी, सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है। और बैडमिंटन में फिनलैंड के वेंटा में 2 मरतबा ओलंपिक मेडल जीत चुकी पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजारत खारिजा ने कहा है कि अमरीका के जरिए PERM दरखास्तों को मनसूख करना H-1B वीजा को मुतासिर नहीं करेगा। हौसियों ने सऊदी अरब में हवाई अड्डों पर फिर से हमले किए हैं। भारत ने इन हमलों की मजम्मत की है और कहा है कि सिविलियन बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह नाकाबिले कबूल है। भारत ने सऊदी अरब में रहने वाले अपने शहरियों से चौकस और मुस्तैद रहने को कहा है। ट्रंप इंतजामिया ने 8 बड़ी टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए रोजगार पर मबनी ग्रीन कार्ड अमल पर रोक लगाने का ऐलान किया है। और क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश आप सभी सामीन के नजर।

गीत का तचल फिल्म का ये दुगाना आप सुन रहे थे आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजों में। नागमणिकार मौसीकार थे रविंद्र जैन। हम आपके हैं कौन। और इसे सुनिए विवाह फिल्म का ये नगमा, उदित नारायण और श्रेया घोषाल का गाया हुआ।

0: जो मेरे कमर्शियल हिसाब से छोटी पिक्चर है उस बड़ी पिक्चर से अच्छी हो सकती है।
1: आप अदाकार हैं,
0: तो अदाकार को
1: जैसे आपने कहा कि किसी भी फिल्म आर्टिस्ट को ऑब्सेशन होना चाहिए, तो जो शख्स इस बात में यकीन रखता हो, जाहिर है कि वो पैसे को फन के मुकाबले में ज्यादा अहमियत नहीं देगा।
0: जी हाँ,
1: तो आप समझते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तवाजुन क्या है? आजकल पैसा ज्यादा जरूरी है, पैसे की अहमियत ज्यादा है, या फिल्म की आर्ट की अहमियत ज्यादा?
0: जब एक आर्टिस्ट शुरू में आता है, पहली पिक्चर जो उसकी होती है, उस वक्त तक वो ऑब्सेशन काम आता है और उसी का नतीजा जो होना होता है, जो फल उसको मिलना होता है वो मिलता है। और बाद में एक और भी बात है, ये कमर्शियल लाइन है, यहाँ कौन सा कलाकार चाहे उसमें काबिलियत हो या ना हो, कब तक टिकेगा, क्या होगा उसका हशर बाद में, वो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं मेरी पहली पिक्चर निशान में काम कर रहा था, दिन रात मेरे दिमाग में वही रोल घूमता था और सुबह से शाम तक रात को सोते वक्त भी मैं वही डायलॉग्स याद करता था और ये सब बातें होती थी। जब वो पिक्चर रिलीज हुई और थोड़ी सी कामयाबी मुझे मिली और फिर जो पिक्चरें मिलने लगे, तो वो ऑब्सेशन कम होने लगा और फिर दिमाग में यह बात आ गई कि आगे क्या होने वाला है मेरा। तो मेरे हिसाब से हर कलाकार के साथ ये होता है, शुरू में ऑब्सेशन रहता है, बाद में थोड़ी सी कामयाबी मिलती है तो उनका ट्रैक दूसरी तरफ चला जाता है। और एक आदमी इस कमर्शियली दुनिया में रहते हुए ये सोचता है कि फ्यूचर के लिए कुछ अपनी सिक्योरिटी बना लें, और कुछ हद तक वो बात रहती है, लेकिन उस हद तक पहुंचने के बाद फिर वो ऑब्सेशन शुरू हो जाता है। और ये मैं अपने एग्जाम्पल से कहता हूं।
1: आप जैसा कलाकार जिसको कामयाबी मिली हो और बहुत से रोल मिले हों, और एक साथ बहुत सी फिल्मों में काम करना पड़ रहा हो, तो एक साथ बहुत से किरदार निभाना आप समझते हैं कहाँ तक मुमकिन है? कोई दुश्वारी होती है? एक ही साथ बहुत सी जिंदगियां जीना क्या मुमकिन है?
0: वो तो आर्टिस्ट की काबिलियत पे रहता है। एक आर्टिस्ट, एक कलाकार दो दो पिक्चरों में एक साथ काम करें तो वो मुश्किल हो जाता है उसके लिए, उन दो रोल्स को निभाना एक साथ। मैं पर्सनली यही बिलीव करता हूँ, फॉर जैसे कि खिलौना या दूसरा दस्तक या खिलौना, जब मैं उन पिक्चरों की मैं शूटिंग करता था, हमेशा साथ साथ दूसरी एक या दो पिक्चरों की शूटिंग साथ साथ रहती थी मेरी। अब ये अलग बात है, अब तो ये तो जब एक्सपीरियंस होगा मुझे, अब के साथ 6 महीने या 8 महीने के बाद जब मेरी पुरानी कमिटमेंट सब खत्म हो जाएंगी और मैं साल में 3 या 4 पिक्चरें लूंगा और साथ एक वक्त एक ही पिक्चर में काम करूंगा, उसका जो नतीजा निकलता है उसे देखने के बाद पता चलेगा कि कितना फर्क होता है।
1: आप जब कोई रोल कबूल करते हैं तो क्या देखते हैं उसमें? कैसा रोल होना चाहिए जिसको आप पसंद कर लें?
0: मेरी कोई रोल के मामले में कोई खास पसंदगी है नहीं। मैं आज तक जितनी भी पिक्चरें की हैं, ज्यादातर यही हुआ है कि या किसी की दोस्ती की वजह से की है, या किसी को हेल्प करने की वजह से की है, या पैसों की वजह से की है, या एक आध दो पिक्चरें रोल की वजह से भी की है। मैं समझता हूं कि आर्टिस्ट के लिए रोल छोटा भी हो, अगर उसमें कुछ बात होती है, एक आर्टिस्ट छोटे से रोल में भी अगर उसमें टैलेंट्स हैं तो वो दिखा सकता है।
1: आपने अब तक जितने किरदार निभाए हैं, जाती तौर पे आपको कौन सा पसंद है? ये सवाल कुछ अटपटा सा है, लेकिन मेरा जी चाहता है मैं आपसे पूछ लूं।
0: मेरी पहली फिल्म निशान, उसमें मुझे अपना रोल बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि उसमें डबल रोल था, हीरो और विलन का, फिर शिकार, संघर्ष, खिलौना, दस्तक और उस रात के बाद।
1: आपने बहुत से कलाकारों के साथ काम किया है, किसके साथ काम करके आपको वो तसल्ली, वो खुशी हुई है जो किसी भी फनकार को हो सकती है?
0: वैसे नैयर साहब, मैंने बहुत से आर्टिस्टों के साथ काम किया है और बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मुझे काम करने का बड़ा मजा आया है। वो जो सब आर्टिस्ट हैं उन सब के नाम नहीं लूंगा क्योंकि अगर मैंने सब के नाम ले लिए तो जिनका नाम रह जाएगा वो सब बुरा मानेंगे।

0: मैं सिर्फ दो तीन आर्टिस्टों का नाम लेता हूँ। एक तो तनुजा है, वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर, शत्रुघ्न सिन्हा, ये तीन चार नाम है।
1: आपके दिल में किसी आर्टिस्ट के साथ काम करने की आरजू है? जी चाहता है कि उनके साथ भी काम करूं?
0: वैसे तो मैंने मेरे ख्याल से सभी के साथ काम किया है, तो आपका सवाल है या दोबारा करना चाहता हूँ या कोई और ऐसा आर्टिस्ट है जिनके साथ मैंने काम नहीं किया और
1: जाहिर
0: करना
1: है
0: चाहूँ।
1: कि फिल्म इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों के साथ तो आपने काम नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ बच गए होंगे, और आपके दिल में आरजू होगी कि काश मैं उनके साथ भी किसी फिल्म में काम करूं, जी चाहता है।
0: जैसे मैंने कि पहले बताया था, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिले राज कपूर, राज साहब, उनके साथ मैंने आज तक काम नहीं किया, और वही एक आर्टिस्ट मेरे ख्याल से रह गए हैं जिनके साथ काम करने की मेरी ख्वाहिश है।
1: ये सवाल मेरा इसी जवाब के लिए था। संजीव साहब, अब तक ऐसा रहा है कि लोग ये सोचते रहे हैं कि बड़ा नाम अच्छी और कामयाब फिल्म की गारंटी है। इसमें कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये वहम ही साबित हुआ, और कुछ तजुर्बा जो हाल ही में हुआ है, कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें नए नाम नए अदाकार थे और कामयाब फिल्में बनी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बड़ा नाम होना किसी फिल्म की कामयाबी की गारंटी है, या छोटे नए नाम से भी फिल्म अच्छी बन सकती है?
0: जैसे मैंने पहले कहा था नैयर साहब कि बड़े कलाकार के साथ बड़ी फिल्म बनती हैं, बड़ा जो बजट होता है वो बड़ी फिल्म होती है। छोटे कलाकार, कमर्शियली छोटे मेरा मतलब है, जो नए हों या जिनका नाम ज़्यादा ना हुआ हो, छोटे कलाकार तो नहीं कहूँगा, छोटे स्टार्स के साथ जो पिक्चरें बनती हैं छोटे बजट में, वो छोटी पिक्चरें होती है। लेकिन फिर मैंने वही बात कही थी कि एक बड़ी पिक्चर बुरी पिक्चर हो सकती है और एक छोटी पिक्चर अच्छी पिक्चर हो सकती है। तो ये जो छोटे कलाकारों को लेकर छोटी पिक्चरें बनी हैं, कमर्शियली छोटी, लेकिन वो पिक्चरें अच्छी बनी हैं और कामयाब हुई है, तो बात घूम घाम के वही आ जाती है कि मेन बात जो है वो पिक्चर की है, अच्छी या बुरी, बड़ी या छोटी, वो प्रोड्यूसर के लिए होती है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होती है, एग्जीबिटर के लिए होती है। ऑडियंस के लिए पिक्चर बड़ी या छोटी नहीं होती, अच्छी या बुरी होती है।
1: तो आपने जो नई फिल्में देखी हैं जिनमें ये नया अंदाज है, इनमें आपको कौन कौन सी अच्छी लगी?
0: मुझे ये सारा आकाश अच्छी लगी, भुवन शोम अच्छी लगी, और खामोशी, अनोखी रात, बहुत सी पिक्चर हैं।
1: आप समझते हैं कि इन फिल्मों का मुस्तकबिल कैसा है? अच्छा है?
0: जी हाँ, क्योंकि ये जितनी भी पिक्चर हैं उनमें आमतौर की जो बातें होती हैं वो नहीं है, नई चीज हैं, और आजकल का जो जेनरेशन है वो हमेशा नई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर जहाँ तक नई चीजें और अच्छी चीजें आती रहेगी, उसके लिए लोग हमेशा तैयार रहेंगे।
1: आपने बहुत से डायरेक्टरों के साथ काम किया होगा, डायरेक्टर की मुट्ठी में पूरी फिल्म रहती है, पूरा नक्शा रहता है। चंद एक डायरेक्टर जिनके काम से आपको न सिर्फ तसल्ली हो बल्कि खुशी हुई हो, उनका आप जिक्र करना चाहें तो कीजिए।
0: वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन फिर वही बात दोहराऊंगा, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ दो डायरेक्टरों के नाम लेता हूं। एक तो आसिफ साहब थे और महेश कौल।
1: ये क्यों अच्छे लगते हैं?
0: इनके साथ जब भी मैंने काम किया, हमेशा रोज हर शॉट में, हर सीन में कुछ नई चीजें सीखने को मिली मुझे।
1: उनमें से किसी का जिक्र कर सकते हैं आप,
0: जिक्र यानी किस तरह?
1: जो आपको अच्छा लगा, जो आपने सीखा उनसे और वो आप

0: आप मजा लेते रहे उनकी लाइल्मी का। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जब शुरू शुरू में आपने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो आपने अपनी आवाज को पूरी तरह ढाला नहीं, जिस तरह आप अब मकाल में अदा करते हैं उस अंदाज में पहले अंदाज में थोड़ा फर्क है। आप समझते हैं कि आपने कोई मेहनत की है इस सिलसिले में?
1: मेहनत की वो तो बात है, लेकिन मेरे हिसाब से एक कॉन्फिडेंस की बात है। जब एक आदमी में कॉन्फिडेंस आता है, ये तो अब बात वैसे ही आमतौर से लोग कहते हैं कि अब इसकी आवाज़ खुलने लगी है या ये अब बोलने लगा है या कुछ, वो वही बात है मेरे ख्याल से किसी तरह उसी बात। क्योंकि जब मैं स्टेज पे आमतौर से जब मैं लोग प्रोड्यूसर से मिलता तो कई लोगों का यही कहना था कि हम यकीन नहीं कर सकते ये आदमी एक्टिंग भी कर सकते, इसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो ये शिकायत बहुत से लोगों थी पहले से, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर उसमें वही बात है कि कॉन्फिडेंस की बात थी।
0: वैसे अब जो आपकी बात सुन रहे होंगे उनको काफी एतमाद होगा कि आप खूब बोलते हैं। इंसान की जिंदगी में चाहे वो कितनी भी कामयाबी हासिल कर ले, कोई ना कोई हसरत बाकी रह जाती है कि ये भी हो जाए तो अच्छा है। कोई हसरत है आपके दिल में जो आप समझते हैं कि अभी तक जितनी आरजुएं थी वो तमाम पूरी नहीं हुई?
1: आरजुएं तमाम नहीं थी, एक ही आरजू थी और वही आरजू अभी तक खत्म नहीं हुई।
0: वो क्या है?
1: वो एक बहुत ही अच्छे बहुत ही बड़ा कलाकार बनने की, और मेरे हिसाब से अभी तक वो बात हुई नहीं है।
0: आप समझते हैं कि अभी आपको इत्मीनान नहीं है जिस मंजिल पे आप पहुंचे हैं उससे आगे बढ़ना चाहते हैं?
1: जी हाँ, जिस मंजिल पे मैं पहुंचना चाहता था और पहुंचना चाहता हूँ उससे तो अभी बहुत ही दूर हूँ।
0: कोई अपनी फिल्म बनाने का इरादा है आपका? वैसे अक्सर होता है कि कामयाबी मिलने के बाद लोग अपनी फिल्म बनाने की सोचते हैं, आपने सोचा है कभी?
1: खैर फिलहाल तो नहीं, कुछ ऐसे बाद जब मेरी पुरानी जो कमिटमेंट्स हैं उनसे थोड़ी सी फुर्सत मिल जाएगी और जब मैं साल में एक या दो या तीन पिक्चरों में काम करने लगूंगा उसके बाद शायद कुछ इरादा है वैसे मेरा।
0: कैसी फिल्म होगी वो?
1: वो फिल्म छोटी होगी, मतलब बड़े बजट की नहीं होगी, बड़े कलाकार उसमें नहीं होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। और जो आमतौर से जो पिक्चरें बनती हैं डेफिनेटली उससे हटकर ही बनाने की कोशिश करूंगा।
0: कहानी के पे ज्यादा आप तवज्जो देंगे?
1: ना सिर्फ कहानी पे, आर्टिस्ट हूँ कलाकार हूँ इसलिए वो एक ऑब्वियस बात है कि रोल का भी मैं भी चाहूंगा कि जो रोल जहां मुझे भी ज्यादा स्कोप मिले एज एन एक्टर वो भी बात वहां से होगी ही। कहानी खैर कहानी तो होनी ही चाहिए, वो तो मेन बेस है पिक्चर की।
0: ये एक अंदाज सा रहा है कि हमारी फिल्मों में जो फिल्मी नाम हैं दिलीप कुमार, राजकुमार, बहुत से मतलब कुमार का लफ्ज जरूर आता है। आपने अपने नाम में ये लफ्ज किसी खास मसलहत की वजह से रखा है या आप?
1: वो जी मेरा असली नाम या अपना नाम है हरिहर,
0: अच्छा नाम है।
1: और मैंने शुरुआत की स्टंट पिक्चरों से, और मुझे डर यही था कि ये स्टंट पिक्चरों से मैं अपना कैरियर अपनी जिंदगी शुरू कर रहा हूँ कलाकार की हैसियत से, तो शायद ये अगर नाम रखूंगा हरिहर तो मैथोलॉजीज में एंड अप हो जाएगा मेरा कैरियर। क्योंकि ये नाम जो है वो ऐसा नाम नहीं है जो ऑडियंस
0: जल्दी से अपना ले।
1: जल्दी से अपना लें
0: वैसे इसमें भक्ति रस काफी है।
1: तो इसलिए तो मैंने कहा कि फिर डर यही था कि स्टंट से शुरू होकर मेरा कैरियर मैथोलॉजी में खत्म ना हो जाए, इसलिए वैसे ही कुछ खास वजह नहीं थी ये कुमार रखने की। लेकिन जब मैंने सोचा कि बाकी सब चीजें तो होगी ही, लेकिन क्यों ना एक ऐसा नाम रखा जाए जो आसानी से लोगों के जबान पर भी चढ़ जाए।
0: तो नाम आपने खुद रखा या किसी ने
1: जी
0: रखा
1: हाँ,
0: आपके
1: मैंने
0: लिए?
1: खुद रखा।
0: ये नाम आपको पसंद है?
1: ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से बुरा तो नहीं है इतना।
0: नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है, मैं चाहता था आपकी राय ले लूं। वैसे आप कहां के रहने वाले हैं?
1: मैं सूरत का रहने वाला हूँ, गुजरात का।
0: तो हिंदी और उर्दू बोलने में आपको कोई मुश्किल तो नहीं लगती?
1: मुश्किल खैर, क्योंकि मेरी पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी और जिस माहौल में मैं घूमता था ज्यादातर लोग

0: ये मुस्लिम्स थे, पंजाबी थे, और इप्टा में मैंने काम किया, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, वहाँ पर मैंने बहुत सालों तक काम किया। तो वहाँ माहौल वही होता था हिंदी बोलने वालों का और उर्दू बोलने वालों का। पिछले दिनों बहुत सी खबरें आई हैं आपकी शादी के सिलसिले में। एक ही मामला है जिसमें इंसान की अपनी राय चलती है, तो आप इस बारे में कुछ रोशनी डालेंगे कि आप शादी करना चाहते हैं, चाहते हैं तो कब और किससे?
1: 3 सवाल आपने पूछे हैं, शादी करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से ये पहला सवाल था।
0: जी
1: वो तो जी, उसके लिए तो कोई, ये तो मेरे ख्याल से सवाल ही नहीं है, जरूर करना चाहता हूँ,
0: कब,
1: ये मैं खुद ही नहीं बता सकता।
0: ये कौन तय करेगा?
1: क्यों, मैं इसका मेरे ख्याल से जवाब जो तीसरा आपका सवाल है उससे लिंक होता है कि किससे,
0: जी तो उसी का जवाब दीजिए।
1: तो वो किससे मतलब जिससे भी करना चाहूंगा वो जब मिल जाए तब वो कब का जवाब हो सकता है।
0: नहीं, मैं अपने सवाल की वजाहत करता हूं, वो कैसी लड़की होगी?
1: कैसी है, मैं जो आम तौर से होनी चाहिए, ज्यादा खूबसूरत भी नहीं, ज्यादा मॉडर्न भी नहीं, एक जो ग्लैमर का माहौल रहता है फिल्म लाइन में उस टाइप की जरूर नहीं।
0: एक बात मैं आपसे पूछना भूल गया था, उसके लिए माफी चाहता हूं। ये बताने की जहमत कीजिए कि अब किन किन फिल्मों में आप काम जो आप लेंगे?
1: ये जरा बड़ा टेढ़ा सा सवाल है, टेढ़ा सा सवाल तो खैर नहीं है, जवाब देना जरा
0: मुश्किल
1: मुश्किल
0: है।
1: हो रहा है, क्योंकि एक तो खाली वक्त मिलता ही नहीं है, और अगर मिल जाता है तो शौक तो मुझे एक ही है जो शुरू से था और अब भी है और मेरे ख्याल से रहेगा, और वो है फिल्म पिक्चरें देखना।
0: तो ये तो आपका पेशा हो गया।
1: पेशा अब हो गया, पहले सिर्फ शौक था, अब पेशा भी है और शौक भी है। वैसे मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन उसके लिए वक्त इतना मिलता नहीं है। इस वक्त मेरे पास पैसे हैं, वक्त नहीं है, तो मैंने बहुत सारी किताबें ले रखी है, कुछ मेरे ख्याल से 1,000-1,500 किताबें होंगी, यही सोचकर कि जब वक्त मिलेगा उस वक्त पैसा नहीं होगा, तो इस वक्त पैसा है तो ले लो किताबें और रख लो, वक्त मिलेगा तब किताबें पढ़ेंगे।
0: संजीव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त अपना दिया और बहुत सी बातें ऐसी बताई जिसमें हमारे सामने इनकी दिलचस्पी होगी। आदाब सर।
2: सामिन, अभी आप सुन रहे थे अपने वक्त के मारूफ अदाकार संजीव कुमार से की गई एक बातचीत की पुरानी रिकॉर्डिंग। आपसे महवे गुफ्तगू थे जनाब के नैयर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फिर डिश पर हमारी नशियात जारी हैं। लीजिए सुनिए कुछ फिल्मी नगमे, आगाज अंकुश फिल्म के नगमे से। आवाजें अशोक खोसला, मुरलीधर, घनश्याम वासवानी और शेखर की, नगमा निगार अभिलाष, मौसीकी कुलदीप सिंह की।

0: ओली जब सुनिए कोहराम फिल्म का नगमा अमित कुमार और सुदेश भोसले का गाया हुआ। नगमा निगार देव कोहली, मौसीकी दिलीप सेन समीर सेन की।
1: तुम हो इस पे शैदा

राजू बन गया जेंटलमैन, इस फिल्म का नगमा कुमार सानू, सुदेश भोसले और जॉली मुखर्जी का गाया हुआ। मौसीकी जतिन ललित की, नगमा निगार देव कोहली।

0: करे है पैसा, दुनिया का भगवान है पैसा, तू भगवान है कैसा, अब ये बात समझ।
1: दर्शक 35 आकाशवाणी दिल्ली का नाम उर्दू सर्विस प्रोग्राम बिन Medium ve Don FM ekedi Akashvani Kerkeli'nin vasfatı sözü bir nefet sonsuk. Kasıta sponsor program Seva Sınglap Abiyan program projüketin yanına zayıf.

0: आकाशवाणी करगिल ला न्यान खान दोन अजीज खान मीमा हुसैन ला अस्सलाम वालेकुम याले प्रोग्राम न्यान खान जनता और तस्पा ओरिजिनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी करगिल छोसना तस्पा प्रोग्राम छुलन जु सेवा संकल्प अभियान जिले गानो अति गवर्नमेंट छोखना अति मीमा हुसैन फंतोक सिफिया गागा जाति सिक्किम ची गाज गोम्बे ग्लेन से दादस को ला तो फेसपा बसे मीमा हुसैन ला डिसोर ग्लेप छुने जु ध्यान जुम से दिनी दी सेवा संकल्प अभियान दिनी दी प्रोग्राम प्यानुक अतिस टॉपिक पर जाओ जो पीएम किसान गांव अति सल्प वसर ना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यहां दिस को ला स्पिरा तम मीना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लंग अति सिक्योर जिसको जो का गुलजार हुसैन साहबा गुलजार साहब सलाम वालेकुम गुलजार साहब ततुस मफुत पा अतस गोमा इरा देवा टिपा जुदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सिक्किम पो जो गवर्नमेंट ने अता मीमांस की लख्यो में मकसद चीजिन में जो को तंतक पुचिन
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सिक्किम पुजु ने तंतक पुदु इन में जो नति पूरा हिंदुस्तान यानो नति प्राइम मिनिस्टर इस एक स्कीम ची लागू बस सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस सेंट्रल इस गवर्नमेंट स्कीम पुला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जेंचिक स्कीम तक इस स्कीम पे अनुक नति किसान सा खास कर सख्यात गेट खनुला नोन को आदि स्कीम पे अनुक दो दो हजार योंचा फिया खोन ला दी फन के थप जाऊं में सुपया छाना दीदी फन के थोबी फिया में चीज पो हकदार पेंसु किसान ला सर
0: सैयद पो मरगोस गा खिन ना यंग नौकरी पे मियो मरगोस
1: कैसा
0: ता नौकरी पे मेन मंगाता गुजर से दे नौकरी मेन मंगाते जा बिजनेस बे दिया छोलेन बे दो चंग दिन दियो तिना देखा सैयद बा जिना जो को फ्री गो जा को फोन एक्स छोलेन यो दिया बिजनेस पे गो ठेकेदार इन दा छोला दोन लचंग मिथोपी या तो
1: दे मिथोपी चंग दिन मिनु खास कर गवर्नमेंट ही थोबी स्कीम पे अनुक एज ए 10000 इकना गेन लखवा पेंशन
0: कसा
1: थोबे दे 10000 गेन ला
0: कसा
1: 10000 गेन लगा सूची पेंशन थोबना ओदुला दी किसान चे जखन पुचवा यांचा मेन सु
0: कसा
1: पेंशन 10000 कन यो गयो दे जे नाता सोशली ओल्ड पेंशन जरे नो दे 1000 2000 जरे या ओदु सो 10000 कन थुर ल खनु ला मेने दी स्कीम पुचवा यांचु खास कर माना मेन चीज पिंचु खुए मी का जमीन यो मा
0: कसा सही दे किसान बिन
1: किसान चोखन ला जमीन मी का इंतकाल यो मा जरे मी इंसु रायमी का इंतकाल म्यूटेशन नंबर माना तो खुआ रजिस्ट्रेशन बाला गुमा गुमा चोचा माना चंग दी मेट पांगाती किसान
0: सागस्यु
1: रजिस्ट्रेशन बाचा लैंड रिकॉर्ड कंग चेक या फलां खासरा नंबर कंग चेक खाता नंबर कुलिया कुलिया ड्यू देना चाहना गवर्नमेंट इज रूल बस की खूनी लैंड रिकॉर्ड कंपलसरी बस की जून ध्यान लैंड रिकॉर्ड योम जरूरी छाना दे कना गाती डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एज ए चीफ या गाची पीएम किसान अनुक एज ए डिस्टिंग नोडल ऑफिसर मैम रजिया जैन मैम इस पूरा आगे तक देना बस की कंसर्न एयो सब क्यों से खुआ जैसे

0: चांद चिन्ह ती कारगिल वन दिन सकपा 2019 सिकन दिन सकपा रजिस्ट्रेशन सो से दोन सगे लैंड रिकॉर्ड सब थ्योमा जरवीन दे का ना कुलिया कुलिया अचास खून खून सो से लैंड रिकॉर्ड सब जंबा से दोन यंग यंग अगेन यंग अचास खूनी देन लैंड रिकॉर्ड उन अपडेट बसे रामी का यथखनित का यथखन पर अचास अपडेट बसे छह जस्ट चल मेन ना का तो अर ने खून दी फन के थपखन बेनिफिट पर किसान साहब वन छे चल चुक छानी यंग अची एज ए चीफ यंग अची नोडल ऑफिसर मैम रजियास कोई भी मेहनत ही कहाँ अचास आगे साधे ने बसे क्यों से दीदी लैंड रिकॉर्ड सब अपडेट बसे ngati kisan sa gadi pene continue lu sha bas
1: kasa bashis gulzar sahab ta zer bi ton pen ju ga sagat pen ngati ju ga asil la dir goz di rokh sir goz do tan kor goz do mo tan haqdar tan do men mi top jas asan sin ju ta condition jap na jam ati da yer mol bin azim ki na nokri pa mi umar goz ya kha 10 ro thal pension mi umar goz de mi la galar goz do dir goz do mo zikan ni gulzar sahab ta ta sor bashin ju pim kisan sikim na jos di pene ga yer zaj bi bari sagat palas tum तुमिस बसे साल यानु या लोखर जानु तुम टू गो चिंदरे ड्यूक है अकोन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम चिंद पर जो दी डायरेक्ट डीबीटीएस सिस्टम बगत सुख शैलास बात या तो नति सहयत पौनला अति जिंगबत बेबिंग ना या कोई ना नो को गोजदो मुनिफिया गत सुख शेरोक्ष छे
0: सर दी क्वेश्चन पुयरस माना खपचन क्वेश्चन छिती सर दी डायरेक्ट डीबीटी जर्चा गवर्नमेंट इस्ताला पीएम किसान रजिस्ट्रेशन बस होचना एस पर अकाउंट भेजो सुख सर या जर्चा खोनी फार्म पियानु गा अकाउंट चिकता सोतना अकाउंट नंबर को गाता सोना देना अकाउंट पे खोने पेने छेने चुक
1: कैसा
0: छाना उदूस बसे खची की अकाउंट डिजिट चीज चीज बसे गलत अकाउंट यानु पेने छेने चुक देखा ना आदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बस की आधार बेस बस सर आधार बेस मतलब पु आधार पु नमो गा अकाउंट से लिंक योतना दे पेने छाचा छाना डायरेक्ट डिबिटी यंग जा सुन की आधार न लिंक योत मैंने खोई पेने छाचा मासूम छाना गवर्नमेंट इस बस की आधार बेस बस आधार बेस मतलब आधार पर गाय कौन सी लिंग होना ध्यान पेने छेने चुक छाना स्नान लांग फार्मर सा यूं होना यू गा पेने माउस हाँ गा मायूस फलान माउस फिस्तान स्नान ला यूं मत पीन दक्षा दुख पीस किला बांध सु छाना बांध छाचा सुन दे स्नान लाइक कौन बेजत पने कौन पे छाचा सुन देना कोई आधार न लिंग पने ध्यान पेने छाचा सुन छाना कोई आधार पो मिसाल जे एंड के बैंक कारगिल ना चुक या स्टेट बैंक ना यो चुक या खुरी आधार पो खुरी फ्रीक नंबर ज्वाइंट अकाउंट फेसत पना दे अनु पेने सोंस छु छाना फार्मर गोन छु दे अकाउंट पे नी माने मैं मान मयो सें छु या अच्छा स्टेटस चेक बना स्टेटस बा चेक बा से को शो बा से स्थान बना फार्मर जे नु ता फार्मर सा जे दे दिए अकाउंट पे माने नी इन मैन माने मैं दुचो अकाउंट सिंग मान मैं जे नु दे कना अच्छा ज्ञान बो दे दे खेरे बेंगा सो से कोन चेक बा से स्थान यांग सो यो मिन खुंती खुरी खानदारी खुरी फ्री गोन खुरी फुआ आधार मालदान मत पना आधार पुतंग मना
1: आधार
0: मन को अकाउंट चोस सो छाना उदूस बसे आधार लिंक पना उदूस बसे ज्वाइन अकाउंट नो पेने सो सो चाइन और दूसरा दक्षिण अति पोस्टल जिन चे अकाउंट दे अति दाखानी अनु उदी अनु अकाउंट नंग ध्यान पेने
1: आधार थु दियो दियो को मैसेज
0: दक्षिण अति एयरटेल जिन चे अनु अकाउंट खचिक एयरटेल दे लिंक का उदू ने अनु लिंक बस पना दो ने अनु पेने सो सो अनु छाना मिमंग अति किसान सगा गुजारिश दिया बेचारिया रंग अकाउंट गा अकाउंट से नंबर लिंक योतना ध्यान नंबर ठीक ठाक बसे लिंक बसे सकता आ अकाउंट पिंग लिंक पुथे ने यहाँ अकाउंट से का लिंक का तो खेलना का तो पी एफ एम एस सी का रिजेक्ट स्थान की आ का लिंक छा छा मंगमो गौर बचो छाना मीमांस ज्यादा जरूरी इनकी फार्मर सा खासकर किसानी फार्मर सा कौन सा ज्यादा जरूरी इनकी खुनतंग खुनती गा अकाउंट से नंबर लिंक योतना देना अकाउंट पर नंबर लिंक बसे जगचा ताकि दी पेने बन में छाचा रोज
1: नि गुजर सब तदिया माता मार दमस पर भी सोजु नि दिया माता रजिस्ट्रेशन बगा अकाउंट छे ता या माते पीएम किसान ने नाजो स्कीम ने नाजो रजिस्ट्रेशन छे ता दो ई केवाईसी या वेरिफिकेशन ओ पीएम किसानी दो मति सगत बोलला दु मशीज उस्ते कहता शिकार ले बिंदु जो कि वहाँ पेने मार लो तू सिका पेने मार ले बिजली ये क्या वैसी मशीन है दी चीज प्रोसेस हो चुकी है रिस चीज का चंगाती संगत पना चीज दी लाभस्थान में बुक्सा
0: कैसा लाभसा पीएम किसान यहाँ सोमा रजिस्ट्रेशन बाज उबना का तो
1: कैसा
0: सोमा सुस रजिस्ट्रेशन या का तो बिल ना का तो खुआ एज पर 2019 डेट पो योम दो
1: हजार
0: उन्नीस बना 2019-20 21 22 23 2016 छाना इंतकाली डेट पो
1: कैसा
0: और दूसरा आती पीएम किसान या खासकर 2019 सिकना टिल डेट दाख छपे आता पीएम किसान रजिस्ट्रेशन बस ध्यान गा सूची की फादर चिक डेट छे मिसाल छाना उदून लमान आसानी एक दो महीने अपना वारासती इंतकाल पर फ्री मी का लोकचाइन फ्री नौकरी म्यों मर बसिन छाना फा

0: फादर डेथ छ न कतो फ्री मी का दो तीन महीने के अपना अति वाला सती इंतकाल छे छ न खोस नाची ऑफिस लयो से नाचस फार्म तांची निजांग पीएम किसानी ओदी का खाता नंबर 5020 तांची खासरा नंबर 20 तांची डेट ऑफ म्यूटेशन तांची यानी नाम यारी मी का इंतकाल सो मिन जाय ओदुन सब पटवरी का ना खोचा छ न ओदुन ला दोना ध्यान मेन चीज पर रामी का राशन कार्ड पे उमर जरूरी और दूसरा रामी का राशन कार्ड उमर गोचाइन और डेट ऑफ सर्टिफिकेट पर आते नाम को सोमिना या हॉस्पिटल का सोमिना या खामा सोमिना इस पर नंबर लाने डेट सर्टिफिकेट क्यों से फॉर्म पे अनुक दुनगांग में कंपलसरी तांगमा जरूरी सर छाना उदून तना स्थान लांग आती डिपार्टमेंट अनुक रजिस्ट्रेशन बात दक्षा गवर्नमेंट बस सेल्फ रजिस्ट्रेशन रंग इस बचा रंग इस सेल्फ रजिस्ट्रेशन या सी एस सी सेंटर का सो से बचा उदू रंग सना सेल्फ रजिस्ट्रेशन बेमासप्रेसी सचिन सुर कोई कना रजिस्ट्रेशन सो सेल्फ रजिस्ट्रेशन बस कोई कना छाचिन सुख सर ई के वी सी चो से अप्रोल छाचिन सुख सब डिस्ट्रिक्ट गिला कोई जुना लेवल का सो कोई ला सो से कोई चेक बचिन सुख की खुया ध्यान रिकॉर्ड लैंड रिकॉर्ड सबमिट बस सुगा या डेट सर्टिफिकेट सबमिट बस सुगा राशन कार्ड सबमिट बस सुगा कोई आधार प्रॉब्लम का तुम इंदुआ देखना खोज देखना अप्रूव तो से डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर पीएम किसान लगा छाना ध्यान खोस चेक बचिन ध्यान का तु सही का तु योजना एस सचिन स्टेट नोडल ऑफिसर का नी लास्ट पिका स्टेट नोडल ऑफिसर अप्रूव से आगे लेपचिन देखा ना अंडर प्रोसेस सो से नी एक दो महीने के अपना या एक महीने के अपना फिर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी सो से रिकॉर्ड लाचिन सर स्नान ला माना आज रजिस्ट्रेशन बस पहले पहले चाना अगले दिन उसका खुआ आई डी वाई डी माना चिंग यान पो फार्मर्स ला गा शुक शुक चे ना गड़बड़ मिछा चे बेफिया फर्स्ट ऑफ ऑल पुक रंग सो से रंग सेलब रजिस्ट्रेशन बा माना जरूरी
1: है उधर सदस्य प्रयोग होता है जैसे गा सुसी सकियत पर गाल यार आदे कोई फूला बारा सा दिसो ता गलती दी तो शन से जो सकियत पर गस या खोज को फुन निजो निसका खोज सकियत गोस तंस सकियत लस बस कोई फुन ला चीज है चिंता रजिस्ट्रेशन माना सक पीएम किसानी का
0: खुराम माला गोद मचा है
1: गोद मचा
0: कैसे
1: और गैस माजूर सो
0: दो मायान दे सर ২০২৬ नेक्स्ट 2027 से यहाँ चुआर
1: गोशा
0: 28 से यहाँ चुआर गोशा दिचे मकसद पे दुई इंसु की गाय सूचीज ई के वी सी माचुआ दुगना का तो ख्वापे ने मियो चा सुन गवर्नमेंट ता जुना मन माचुआ दुस मिसाल 2026 से माचोस फिर घुस को पता ख्वा पता छार गोस की दुस चा माचो इंसु या तो ये डेथ हो गया या तो कुछ हो गया जरे माले बना कोई दुई पे खोई पेनी वन बजन सु छाना मीमांसा दिया जरूरी की खोन रंग यन मिसा पुरा ई के वी सी चाओ माना जरूरी हर फाइनेंशियल हर फाइनेंशियल ईयर यानी चुआ जरूरी दो बच्चे सर 2024-25 सर माची चीफ सर्विस ना एसएनओ मैम एक मिशन चिक जासमिन सर ध्यान पूरा ई के वी सी माना ट्रेफिया एक मिशन बस है 2025 100% अचस ई के वी सी सेचुरेशन बस शाम ना सो से चोचा या कंसर्न जोन ऑफिसर सर सो से माना ब्लॉक ब्लॉक या जोन या सो से अचस ई के वी सी चोस नाति दूर दराज इलाका न्यान मि नाति मतलब जैसे जांसकार चोस या ई चू चोस शरगंडी चोस दे जगह ने थिला ब्रोक जो जगह ने नुना नेटवर्क की प्रॉब्लम न चोस सर छाना दो ने मी खचिक पीएम किसान फार्मर खचिक बेचारा गरीब यो चुक और माना छरमा यो चुक ई के वी सी चुआ खून रमा फैसिलिटीज में पर नेटवर्क की प्रॉब्लम में पर नाची चीफ साहब ने मैम इस क्या देना बस की डिपार्टमेंट खुंदेस गाड़ी तंस जहाँ मतलब क्यों से गार जगह का नेटवर्क डू लेना का क्यों से खून ला जाना था देखा जान वन था ई के वी सी चोस से यंग खुदी खमार था से ना दे साहब की गांची 2024-25 ही मिशन पो माना सक्सेस ई के वी सी माना 100% सेचुरेशन सो सीन छाना दक्षर नेक्स्ट ईयर पे अनुक 2026 से अनुक यंग जा चोला ई के वी सी हर जून यंग ट्रेन आयोत और दक्षा मीमांस जा गुजारी सीन की गांची हेड ऑफिस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनुक एस पीएम किसान सेल ऑफिस होत सर ध्यायों से ई के वी सी चुआव माना जरूरी ध्यायों से चोचा
1: तब उधर सब एंटी हेड ऑफिस ला ई के वी सी सेल होत जरे तमाती ब्लॉक लेवल का या थानी से मलसानी के अंतिम सेल वेल लॉन्च ने चंग

0: तहसील लेवल निकाउँ
1: दो निकाङ अछि का अफिस हो सर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अफिसर सर दो निका एज ए वीएनओ जरे नचि विलेज नोडल अफिसर पीएम किसानी चोसुत दो नि हर जोन यानु खुनिस दक्ष हर सेंटर सेंटरी का ईकेबीसी चोन हो सर कोस केम तंग से याद न बेंच
0: हरिश ने मत खमत करगी लो मौन
1: छ मौन और चमान खास कर मतलब जो मेन चीज पति खाची दी करगी एरिया दुख सोन का तो मेन ऑफिस लायो से चोचा या जैसे चिकटन जेर या सांकु दे प्रजोन का तो नाची एक्सटेंशन ऑफिस सरगोल या एक्सटेंशन शकर चिकटन सांकु पानी खरीन का सो से ईकेबीसी चोचा
0: गुजर सब दस मता गा सके गवर्नमेंट रूम चाहिए जुगा डिपार्टमेंट चाहना टेक्नोलॉजी का मता मन अर्ध्यंग का ममोत हो जुगा टेक्नोलॉजी स्ट्रोली का मता बेनिफिट मती मीमा सुन लिप चुकी मता फलूत हो जु नी पीएम किसान ही ना जो टेक्नोलॉजी को ले या जो शांत फाइनेंशियल असिस्टेंट वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन बिदा किसानों ने दे फिर मता दे आधार लिंकेज या डिजिटल रिकॉर्ड या ऑनलाइन सर्विस दुनिया चीज रोल जो
1: सर दिया नुक दक्षा टेक्नोलॉजी जैसे रेस्ट दिया गाता मेन चीज पो दक्षा गाती फार्मर सगाती पीएम किसान एप्स आयो सर या मोबाइल उन्हें नुक एप्स ताऊ सो उदी एप्स पे गाता एज ए फार्मर सा खुन्तां गास सूचे मोबाइल स्टूल बा शेषखान योजना का तो दे पीएम किसान मोबाइल एप्स इन चोत एप्स तो खुन इंस्टॉल बासे डाउनलोड बासे दे एप्स के जरिए कंग खुन्तां ना खुन्ती रंगसु से सेल्फ रजिस्ट्रेशन दिया मोबाइल जरिए कंग
0: बाहिन
1: ईकेवी सिंह चुआंग यंचाई छाना दी जरिए का दक्षा गवर्नमेंट इसमें
0: सहूलियत
1: सोचे सर छाना सर दक्षा मेन चीज पो नाती नाचन दक्षा डिस्ट्रिक्ट कारगिल अनुप तो नाती 2019 सिकना 2000 दक्षा टिल डेट सप्पे करता रजिस्ट्रेशन पोंगाती डिस्ट्रिक्ट कारगिल अनुसार या 14,159 नाती टोटल रजिस्ट्रेशन बीच रजिस्ट्रेशन हो दिया ना लगभग 13,905 बेनिफिशरीज ला दी बेनिफिट पो ताना दिया गेप ची खाची लूज दे 14,159 ना ताना 13,905 ना दिया कारण पुंगास नी गाची पीएफएमएस का एकोना आधार लिंक माछापना पेनेमा या एकोना आधार लिंक माछा और दूसरा ई के बी सी माना माछुआ दुबना का तो बसे खाची डिफरेंट पर्सन से ओवरऑल दक्षण छपिंग आती कारगिल डिस्ट्रिक्ट कारगिल 2019 सिकना 2026 सपिक दांस सपिंग अति फार्मर्स ला टोटल 51,40,18,000 पेनि थप्स खान इन्सर थप्स नियत टिल दक्षा आता 2026 सी क्रिस निस्पयों सिन आखरी क्रिस पो यंग दक्षा यंग मा देना सोन सिन सर जाति मा निमोर निमोर सोन सिन छाना ओदिफिया अच्छा सर दिया गुजारिस पे न्यान मेसा पो यंग सर्चिंग जरे की ई के बी सी माना चुआ
0: गाना में
1: चौक
0: बख्शीस गुलजार साहब ता यरी मुल भी नाजिन यान दी पीएम किसान यरा दी तंता मत दख सिल बने जो मता दु तखपा छन की गाती गवर्नमेंट खास गाती नेल बचन सहयत पाला अगर सुख से रोग्स बिंदु खोए गोदुन खुरा आता फैसिलिटी का मालिक चुसे टेक्नोलॉजी स्टोरी का आता मोबाइल का खो आदि ई किसान ए बिहार जसन मौजूदा सुखला लोकसो लोकसो गोम्बाल लेने चिंगन चिंगन तुम आती सगत पाला रोग लप चुसन जाय नी गुल्ला साहब तारे पीएम किसान स्कूल लाती सगत पाला मन दमस पर दमो खो सांदी स्पेरान ला साहब आज तुजा फंतोख लनु नी सांसे का प्रोग्राम में गुल्ला साहब चीफ सिंह साहब आती सगत पाला
1: नी फ्रेंड पुदियान के खासकर मेन चीज पर पीएम किसान फार्मर सगाजु
0: कसा
1: न्यान मिसापु रांग अकाउंट सक चेक बिफिया याब ना नेशनल लांग इन टाउन जस की गा फार्मर सिज दक्सा 4 महिना छाचिंग आती फार्मर सग जु बसे निमा देसे दु दापो सा हिरा जना ना पेने मायो पेने बुजिंग बुतो मा चीज दे नु किंगा पेने ओस पीएम किसान इज दे ए जेन ना पेने मायो ओस उदु चला नि तां से मान मा रुपा
0: कसा
1: हर 4 महिने गे अपने या 3 महिने गे अपने आची पीएम किसान ऑफिस लायो से रंगे आधार पुखुरे गा

0: دلیل تسبری خبران لاین نت بین میریم وی بدون اپمیکت یو اکاشوانی کرگلین واسپتو صدقان امرسوم چو سنسو کسطا ڈاکٹر شیامل آنانی کنار تلکسیس کو لٹی سیک پرو چگت نین مزد چسو بغن پین سباش کن نام
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो वाई। रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक वाई आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY, वाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
2: दोस्तों नमस्कार, हेल्थ हिंट्स में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा आप देख ही रहे हैं कि हम प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और इसके बहुत लाभ भी हैं, पर लाभ के साथ साथ कई बार इससे जो जुड़ी कई चीजें हैं वो हमें बहुत प्रभावित करती हैं। जैसे जब हम टेक्नोलॉजी या जो इस जीवन शैली में, जो वर्तमान जीवन शैली है, भौतिक जीवन शैली है, हम इसमें इसका प्रयोग करते हुए इतने आगे चले जाते हैं या इसके साथ इतने कदम ताल कर लेते हैं कि हमारी जो दिनचर्या है, हम जो नेचुरल तरीके से हम जब रहते थे कि हम सुबह जल्दी उठते थे, रात में जल्दी सोते थे, हमने ये नियम भुला दिया है। और भौतिकवादी युग में और हम सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस्तेमाल में इतने आगे निकल आए हैं कि हम अपनी आंखों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, या यूं कहें कि हम कुछ दुरुपयोग भी करने लगे हैं। हम स्क्रीन पर बहुत समय देते हैं, अब चूंकि ये हमारी जरूरत है, हमारा व्यवसाय, हमारा काम, हमारी नौकरी इसी से जुड़ी हुई होती है, हम इस पर बहुत देर तक काम करते हैं क्योंकि सारे काम इसी तरह होने लगे हैं। तो यदि हम अपनी आंखों का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, कई ऐसे जो कलर्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जबकि हमारी आंखें कभी कभी इस कलर्स से असहज महसूस करती हैं और हम ये कार्य लगातार करते जा रहे हैं, तो हम अपनी आंखों को इस जीवन शैली में, वर्तमान जीवन शैली में कैसे सुरक्षित रखें, कैसे उन्हें बीमारियों से बचाएं, कैसे उन्हें देर तक सुरक्षित रख पाएं, इसके लिए जरूरी है कि हम किसी विशेषज्ञ से बात करें। और दोस्तों ऐसे ही एक विशेषज्ञ आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं दोस्तों डॉक्टर श्यामल आनंद। तो आइए डॉक्टर श्यामल आनंद से जानते हैं कि भाई आंखों को सुरक्षित रखने के वो कौन कौन से उपाय हैं, कैसे हम अपनी आंखों को ये कार्य करते हुए भी सुरक्षित रख पाएंगे, बीमारियों से बचा पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। देखिए सुभाष जी, जब से पोस्ट कोविड एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि सारे लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो स्क्रीन टाइम बढ़ने से क्या हुआ है कि जो पहले लोग किताबें पढ़ा करते थे, जो पहले लोग स्कूल जाके पढ़ा करते थे, जो बहुत सारे काम फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था, मीटिंग्स में भी फिजिकली जाना पड़ता था, किसी दूसरे शहर जाना पड़ता है, तो वो सारी चीजें जो है अब आज की डेट में अपने स्क्रीन पे आ गया है। और आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, क्लासेस घर से हो जा रही हैं, आप स्कूल नहीं जा रहे तो घर से हो जा रहा है, तो इसका डेफिनेटली आंखों पे तो बहुत खराब असर पड़ा है
2: जी।
4: और जो सबसे खराब असर पड़ा है वो मैंने देखा अपनी प्रैक्टिस में कि जो बच्चे हैं उनका जो है मायोपिया प्रोग्रेशन बहुत बढ़ा है। मायोपिया मतलब माइनस का पावर काफी बढ़ा है, मैंने -6 डॉप्टर तक का देखा है अपनी प्रैक्टिस में, और डॉक्टर्स के अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, जरूर होंगे। और एक मैंने स्कूल में कैंप भी किया था, स्क्रीनिंग कैंप किया था लखनऊ के एक प्रतिष्ठित स्कूल में, तो उसमें 1400 बच्चों को स्क्रीन करने पे मैंने पाया कि 90% बच्चों को चश्मे का पावर आ रहा है, तो जो शायद पहले नहीं रहा होगा
2: जी।
4: तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि चश्मे का पावर बढ़ रहा है बहुत ज्यादा।
2: इसके अलावा क्या कोई बीमारी भी हो सकती है इससे?
4: जो सबसे आंख में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो तो ड्राइनेस होती है, और मायोपिया अपने आप में इसको बीमारी कह लीजिए या चेंज कह लीजिए कि आंख का

टेरिटोरियल आर्मी एक्ट पास छखन इन्सोक गा व्यानोक टेरिटोरियल आर्मी लीगल फ्रेमवर्क चिक्स चुस्खन इन्सोक अक्टूबर छे सरगु चिक्सतोंग गुबिया ना जिपचू जगरगु यानोक रजिस्टर्ड हिंदुस्तान शख्सित सोंसे इंडिपेंडेंट इंडिया दने यपना टेरिटोरियल आर्मी रियाला बसे इनोग्रेशन छखन इन्सोक दी इनोग्रेशन पो रजिस्टर्ड हिंदुस्तानी गोमा गवर्नर जनरल सी राजा गोपाल आचार्यस बसखन इन्सोक तेर यपना टेरिटोरियल आर्मीज नामसंग नेशनल इमरजेंसी छाना यंग इंटरनल सपोर्ट ड्यूटीज छाना या मिलिट्री ऑपरेशन दया नचोक्सला अति खरखोर कुन स्ट्रुंगलुक्स पेमिंग नंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन दी एरिया न्यानुक दी मलसा न्यानुक खुंती लस्कुन बेन युत इंसो दरे टेरिटोरियल आर्मी रजिस्टर्ड हिंदुस्तानी इंडियन आर्मी ना लखथुत बसे रजिस्टर्ड डिफेंस सिस्टम पो या ngatanga नेशनल रिक्वायरमेंट्स रियोंचस इनंग दोनिया नुक स्टनपो बसे खुंती लस्कुन बेन युत इंसो अक्टूबर इर्गु दे जकपो चे जकसे इंजरना चे जबना चिक्सतों रुबियना जिपचु जगरगु यानुक दी जकपो फॉर्मली इनोग्रेशन बसखन इंसो निगातेस दियानो मेन तोंतक कुनकतो जरनकतो टेरिटोरियल आर्मी बुनियादी तोंतक पोखरंग देना इंसु की सिविलियंस कुन मिमंग्स कुन गान वॉलंटरी राजाकाराना तौर पर खों मिलिट्री सर्विस यानो जुक्सनी कतो योदना रंग एलास पोंग यंबो यंबो बेन खों ट्रेनिंग तंगसे खों चतक बसे जकचा ताकि नाम संगतंगा गेस्ट्रिक पोलार्गोस नकतो इमरजेंसी संसर्गोस ना ओदेचना खोंगा दि सर्विस कुन दि सर्विस कुन नाम तंगचस इंजर नकतो नातेतना नेशनल डिफेंस यानु खोंगिस्तेन तंगचस नाम संगति रेगुलर आर्मिया इंडियन आर्मिया गोस्पी तुस्प्यानुक दि टेरिटोरियल आर्मीज मेन पावर निंचे कतो छाना खोंग सोंसे ओदे ऑपरेशन कुन्यानुक स्टेन बचस इंचुक निसरिसी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ला असिस्टेंट बचस इमरजेंसी सिचुएशन उन्यानुक सिविल अथॉरिटीज कुनी रोक्स बचस नामसंग अगर कतो मिलिट्री असिस्टेंसी जरूरत कतो छेनोतना दियानुक टेरिटोरियल आर्मीज स्टेन थांचस इंचुक यहां दिया चुक्सला इसेंशियल सर्विस कुन मेंटेन बचस प्यानुक तेतना कतो रेलवे या दिया चुक्सला ऑयल सेक्टर दोना यंग बाकी सर्विस कुन्यानुक गान गतंगा लिखसेना छछा इनंग ओदोन्यानुक अगर कतो रगोशा स्योतना कतो दोन्यानुक खोंसोंसे लस बचस इंचुक द्याचोक्सला इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानुक अति खरकोन कुन स्रुंगलुक्स पेमिंग न्यांग टेरिटोरियल आर्मीज एफोरेस्ट्रेशन चंगमा लक्सुक्स कुन चुकचस द्याचोक्सला इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स कुनांग खोंगिस लेन मछाचुक द्याचोक्सला नेशनल इंटीग्रेशन यानुक लोक्सो प्रोफेशन कुन लोक्सो छोस यानायों से बैकग्राउंड्स कुन यायोत खनी मिमंग सुनिस मिलिट्री सर्विस यानुक योंग से चिकडिल बसे लसबा छाचुक नि टेरिटोरियल आर्मी ने रेगुलर आर्मी अनुगातेस फरक कतुल तेतना कतो टेरिटोरियल आर्मी सिर्फ पार्ट टाइम जी इंसुक खुंती न्यंबो योत्खानी प्रोफेशन पो खुंती रोजगार पो बेन जी अनुक टेरिटोरियल आर्मी अनुक लसबा यन जज इंसुक निगाते रेगुलर आर्मी अफ तेतना कतो फुल टाइम मिलिट्री सर्विस तंग मरगोशस इनम निंगी सिरिसी खतुस पोयोतांग वर्ल्ड पोस्ट डे जरे डा रिजकपो मेली थोरिका दिजकपो अक्टूबर से सुरगुआ लोबिंग ममल लख्योंग मछाचुक दिजगी तोंतकपो पोस्टल सर्विस कुन डागी सर्विस कुन या खे छछा या पोस्टल डागयानुक लस पेन्योत खान मिमंग सुनी खक कुन यंग इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यानुक डागी चमशिक रोल कुन्योत दून गंग मालास तोद्रा बेमिंग नंग दिजकपो जक्सीन चुक पोस्ट ऑफिस याने लस पो सिर्फ नतंगा शोक्षोक कल्चस पोचा या शोक्षोक लेपचुक चस पोचा मेन्जुक दरे सितुस्पियानुक पोस्टल सर्विस यानुक पार्सल लेपचस ई कॉमर्स डिलीवरीज फाइनेंशियल सर्विस यंग दुसला गवर्नमेंट सर्विस सुनी सुन मीमंग सुन सुप्पा फ्रचुक प्यानुक रोल अदा बेन योते इनसो वर्ल्ड पोस्ट डे या म्यूलिथोरिका डागी जकपो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू दी एस्टैब्लिशमेंट दूसरे एनिवर्सरी का जकसे इनसोक निदो अंगातिल तेतना कतो चिक्सतों ग्याप्याना जिप्चियानोक मॉडर्न पोस्टेज रिफॉर्म छखन इंसो ब्रिटिश पोस्टल रिफॉर्मर सल रॉलेंट हिलिस प्रीपेड पोस्टेज यंग स्टैंडर्डाइज डोमेस्टिक पोस्टल रेट कुन देचना चुस्खन इंसो यंग देर ग्यापना चिक्सतों ग्याप्याना त्रुकचुरक सुम्यानोक इंटरनेशनल पोस्टल कॉपरेशन शुरुआत छखन इंसो देचोक्सला चिक्सतों ग्याप्याना रुदुंचु तोंजबी अनुक यूनिवर्सल पोस्टल सिस्टम ही स्म्यांग रखा निंचुक द्यात सुक्सला अक्टूबर छे सुरगु चिक्सतोंग रग्याप्याना रुदुंचु तोंजबी अनुक ट्रीटी ओ बर्न छखन इंचुक गावे नालजोंग्स जनरल पोस्टल यूनियन ही

सबसे पहले पीयर प्रेशर हो चेन, एक्सपेरिमेंटेशन हो चेन, दूसरा और एक इम्पोर्टेंट रीजन जी चीज दसंग सोसाइटी अंत हो कि दो स्टूडेंट को हम कम्पीट नहीं कर सकते दसंगा अभी फ्री को नंगा संगी फ्रू अच्छे फसपन बोले फ्री को खो नुख कम्पीट में बार क्वेश्चन मुकाबला में दाम क्वेश्चन नी फ्रू खरंग एक अलग फील्ड चंग खुया टैलेंट हों स्किल हों पोटेंशियल हिडन पोटेंशियल हों खोखर चौधरी फील्ड में लस बेंच अचन नी फ्रूस आप्रू यंग फील्ड चंग खोया बढ़िया हों हो सकता है को आर्ट सब्जेक्ट में बढ़िया होतना नी फ्रू साइंस सब्जेक्ट में ठीक होतना गा न एक न दे फ्रू कम्पीट में नहीं बार क्वेश्चन द चौदह दसन नतंगा family pressure on us bus saying that the sanchi chen jena ka dok different is drugs lena not so ma so matlab dekho khud tum chik aage sung a ngati paspo ni busao a yul pa busa tum chik aage sung tum chik usne tarqi ke khyal to kuch apne nahi kiya zare aur to ngata ko ye chen chen jena ka dok dekha family pressure compete between two child so is like competition bachan ka ta bahut galat hain don me bar question don ka to bana ka to ka ta chi chhe chhe bana ka to ka ta ni pressure hunchen nati phuni ka ek dekhna ko depression ansa chhe stress ansa chhe dekhna ko drugs consume bachan chana ke encouragement bar question khus ga chus la chi bana ta denga tas encourage bacha khus pakhan pa ab acha kar raha hai theek to no no bahut badhiya duk sare so much encouragement aur baaki dasan gati lifestyle pe mane change so so bahut hi unfortunate hai dasan gati fun gangma mane khangma maximum pe as a teacher main dekh raha hu fun lagun ta alag kamra chus dete e buse bedroom pu duin e buse bedroom pu aain de ji ata me chal la jak pe jak par question ko ata ma ne bujh na sake do majak pa de badalat khum de sakta wo apne ek luxurious lifestyle pata nahi wo bhi unexplored मतलब जिसका हम कुछ भी अब हम उसका बेनिफिट उठा नहीं पा रहे लग्जरियस लाइफ का चुका जरिए पूरा देखते फ्रिशी बना बस खुद नाम घर छेद कहाँ कितने बजे खो उतने नाम पाए उसे दुगे सन एक बजे का खो दे चैन नीतता चैन मैं तो 12 बजे का लाऊ चिंग टिखन में तो उसके ऊपर सुपरविजन हमारे बिल्कुल नहीं ची बना बा चुका दें दोनों दें जन खेर दें चीजें ना उन्होंने जन खेर जा मतलब खो के मतलब गतंग नंबू जब पड़ोसी में हमारे साथ तो रखो जन गतंग नंबू जा चुप गतंग नंबू का स्टडी बचुप तना पे खो गतंग जितना हो सके गतंग खो के एज ए सुपरविजन गतस को एक लेस बार क्वेश्चन उदू मीछा चास बसे पीयर प्रेशर ऊंचा बसे एक्सपेरिमेंटेशन ऊंचा बसे कम्पीट कम्पिटिशन बिटवीन डिफरेंट चाइल्ड की वजह से दोनों आदत लग्जरस लाइफ कॉमन लपे ने था चंदे बस दक्षिण बाहर ले सबक आयो उसका एक पेने लगाती खुए कंपार्टमेंट ने कंपोनेंट जो रोशन खुए पेने दू खुआ ट्यूशन लेते चिक मेरे मिशात रूम रेंट खुआ तो इन वह खुआ ड्रेस को उसको आदे बोले बुक बुक किताब इतनी चिकन बाकी अंकुआ पेने चे था लेकिन खास करना थी फैमिली अताज था आमा खुरी शीता दे अंकुआ यंग रोज पद पदिन उसका मैं बात से कि उतना या मच्चे चेचे को उतना दो खरस पे निकले अब पैसा जरूर और जरूर दिप्रो खराब बचन उदून का रीजन इन दून का मी बार क्वेश्चन छाने का तो अब देखो गा दी ड्रग्स पर गति बॉडी ना देखो सोसे सोसे ना नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर क्वेश्चन ये हमारे ब्रेन को म्यूटेट करेगा ब्रेन को वो डिसऑर्डर कर देगा ब्रेन का एक नॉर्मल प्रोसेसिंग एंड फंक्शन होता है और तो बच्चा मैंने आप अपने एप नॉर्मलिटीज आएगा अब उसका रूटीन जो है वो खराब क्वेश्चन अब उस बच्चे के अंदर कोई रूटीन नहीं रहेगा एक एक पीरियोडिक साइकिल को चेंज सचिन अब कोई नीमा छन लंचन छन पुंगीमाल दंचन ड्रग्स लेन खान फ्रू नहीं बिल्कुल अब क्योंकि उसकी जो मेंटेलिटी है उसकी जो मेंटल बिहेवियर है उस पे इम्पैक्ट किया ड्रग्स ने सो और ये इतने कॉस्टली होते हैं ड्रग्स इनका जो ग्राम करोड़ में होता है ग्राम करोड़ में होता है और इसके बाद तो सोसाइटी में देखो बैंकक्रॉफ्ट रॉबरी अच्छा स्टोलिंग चीटिंग मर्डर बड़े बड़े क्राइम बचन क्योंकि इसलिए वो क्राइम करता है ताकि उनको उनसे पैसा आता है कि मैं अगर पिने मन थोड़ी देगा उसका पेरेंट्स नहीं देगा तो खुश कुछ या मीक सचिन इस जशन उसको मारने से पैसा आएगा तखसन सुहैद देगा पिने बचन अर्जुन तंगचैन और उसका बिल्कुल छाना वो एक सोसाइटी में एक बहुत ही बदनाम इंसान बन जाएगा सोंगतंगमा जितने भी स्टेक होल्डर थे चाहे पेरेंट्स हो चाहे स्कूल का
टीचर स्कूल स्कूल बहुत एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है डिफरेंट अवेयर पे. स्कूल स्कूल का टीचर इज हर टाइम क्वार्टरली मंथली वीकली अवेयर पे इन द प्रोफेशन और उनको मॉनिटर करना पड़ेगा. स्कूल पेरेंट्स सोसाइटी गति सोशल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ सब उन सब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन गंग में का अहम रोल है कि इन बच्चों को मॉनिटर करे. ये हमारा एसेट है, ये एसेट

0: बात ना हो जाए, ठीक है? अच्छा, अचानक तो इसीलिए, फिर एप नॉर्मल हो जाएगा, फिर उसका किडनी डिसफंक्शन हो जाएगा, लीवर डिसफंक्शन हो जाएगा, उसका विजन पुअर हो जाएगा, अचानक वो हेल्थ भी, वो फिजिकली मेंटली वो अनफिट हो जाएगा। फिजिकली मेंटली जब जो बंदा अनफिट हो गया तो सोसाइटी के लिए वो एक एसेट नहीं, सोसाइटी के लिए वो एक बर्डन बन जाएगा, ठीक है? अचानक तो ना जितना हो सके इनको मॉनिटर करने की जरूरत। छाना जो बच्चे ड्रग्स लेगा वो सोसाइटी में हर तरह की क्राइम्स करेगा, उसका जो एग्रीशन है, उसका जो अप्रोच बिहेवियर है वो बहुत एग्रेसिव, जो बंदा ड्रग्स एडिक्शन में इन्वॉल्व हो चुका है वो अब क्या बनेगा, एक क्रिमिनल बनेगा सोसाइटी में। तो प्लीज हमें इन सब से रोकना है। प्रिवेंटिव मेजर्स मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकता है, काउंसिलिंग सबसे इम्पोर्टेंट, काउंसिलिंग हिदायत माने जरूरी इंडक्शन। हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इस जो फ्राइडे सरमन है उसमें यहाँ पे काउंसलिंग करने की जरूरत है, हिदायत करने की जरूरत है। स्कूल जो मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ की काउंसलिंग होता है वहां पे काउंसलिंग करने की जरूरत है। एनजीओ से उनको भी हर जगह मॉनिटर मूवमेंट्स करने की जरूरत है। काउंसलिंग से हम इन बच्चों को उस क्या कहते हैं गंदगी से, उस हॉक एंड डिस्ट्रक्शन से हम उनको टुवर्ड्स एक नॉर्मल लाइफ ला सकते हैं। काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। सुपरविजन दूसरा है, जिस दिन तक कैमरा चौदह के ऊपर उसे एक्टिविटीज इन द मॉनिटर बिन सुपरविजन, और उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में देने की जरूरत है। तीसरा, रिहेबिलिटेशन सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे उनको रिकवर रीइम्प्रूव किया जा सकता है उनकी इन हरकतों से, और मेडिकल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इन चीजों को सही से हैंडल किया जा सकता है। तो ये हमारे पास एट कंक्लूजन नटशेल में ये कहना चाहती हूँ हमारे तमाम आइडेंस को कि हमारे पास नमाज के बाद एक वाजिब ड्यूटी आज सोसाइटी में आ चुका है। ये हमारे हर गांव, हर मोहल्ला, हर रीजन में ये तबाही, ये मेनेंस आ चुका है। जब हम इसको एक वॉइस ले
1: नरेश साइंटिस्ट मोहम्मद इसहाक टीचर रिकना ड्रग एडिक्शन दोनों यूथ की खत उस पे का यंता स्पेलरी गस नंगा बिन उत्पिन रियांगमा जगह रियंतंगा दी टॉक पर दे मुसोरे दुख तो या यंतेस दुनी का ना फन खेलें तो जना ना यंबुंग अच्छी स्टूडियो गड़ी ना जोम से दिरी प्रोग्राम ही तुस पांच हम आठ होने दो ननमित लुसना या यंतंग ना यंबुस का थक चचस दे मन पुंगा इस इन शज दे बोस यजु खुदा नार संगमानी फगने।
2: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट। वाओ,
3: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
4: हमेशा पूछो WHY, Y कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
5: मीडियम वेव दोनों एफएम के थ्रू आकाशवाणी करगिलिन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा है कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटलसैट वन वेब सहित 3 कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित हैं। डॉ जयशंकर ने इथियोपिया के विदेश मंत्री गिदियोन तिमोथियोस हेसेबोन के साथ आज राजधानी